का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

श्रोताओ, ये था आज का नीति वचन। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से, के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, आपको चलिए बता दूं कि आज की पहली प्रसारण सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और इस कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता जी कालो। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम पेश करेंगे ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रोताओ, आइए सभा की शुरुआत करते हैं आज की कार्यक्रम की जानकारी के साथ, जो अब से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाले हैं। तो श्रोता, अभी आप 6 बजे ठीक सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज में श्री गणेश भजन। ठीक उसी के बाद 6:40 को प्रसारित होगा गालो भाषा में समाचार, और 6:45 को आप सुन पाएंगे सुबह सवेरे।

श्रुता 6:07 को आप सुन पाएंगे या पता नहीं भाषा में समाचार और 6:07 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। ठीक उसी के बाद 7:45 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार और 7:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदा बहार और 8:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। ठीक इसी के बाद 9:00 आप सुन पाएंगे फिर से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। 9:10 को कार्यक्रम फिल्मी गपशप पेश होगा और 10:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और आखिर में 10:10 को आप सुन पाएंगे आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।

दोस्तों, ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 11:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो दोस्तों, ये था आपसे लेकर 11 बजे तक प्रसारित होने वाले आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा की कार्यक्रम की जानकारी। तो दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे गणेश भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

श्वेता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आपने सुना श्री गणेश भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज में और श्री कृष्ण भजन अनूप जलोटा की आवाज में। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे अपतनी भाषा में समाचार।

0: ordination meeting ka bago dukum ga tu agna dukum nam ga lege laga ku kart tan na pura pol ga hamum go lok en tarik lok ka luk pol ga alokan tarik lo ba tawang lo holy relics of Shakyamuni buddha ga puja itta nam laga ba am tu ok disim mi men la du na tolo bolok ni kum t jot ba ye alug ye klap ok laga ba naru department ga de ok yadna go institutions ka du de ok yona organizations ka du de ek na ru ga de mudum hagdum hida kula alli ba successful ru pe lagi du na ka amla sin din si ja ba men tu ok mok is sam sin hapu ya pa ba le ru pe lagi du na ka amla sin ka ba lo ka du lik na ga dam din si ja ba mega ji jin la sin ika ok weather abaloku da The Meteorological Center Itanagar ga pele lok yellow alert warning go jilen dakula mela west coming east coming kurunku me papum pare anjao ok changlang district gadlo nido ko dia maj be ode dangnak ok doi do yak basin ide dangnak mok mok lo amla sin din si jab mengap jin jin lasin ika ketan ga de hir ga galomen ken agma agam
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार गालो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर दोस्तों अब वक्त है आपको ले जाने का हमारे अगले कार्यक्रम की ओर इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे
2: बंधु नई कार जीतने का मौका वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है
3: रुक जा बुद्धू
4: व्हाट ऐसे पॉपअप से सावधान रहो स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं
2: तो समझ गई ना रिलैक्स पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
1: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी स्वागत है आप सभी का आपके मॉर्निंग हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम सुबह सवेरे में तो दोस्तों सुबह का वक्त होता ही कुछ ऐसा है हवा तो फ्रेश होती है एनवायरनमेंट पीसफुल रहता है और अगर इसी वक्त हम अपने दिन की शुरुआत थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से करें तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील हो सकता है आज का हमारा टॉपिक है रनिंग और कार्डियो के एक्सरसाइज आजकल हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वेट ट्रेनिंग और जिम वर्कआउट्स के बारे में बहुत सुनते हैं और बिल्कुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हमारी ओवरऑल फिटनेस के लिए काफी जरूरी है लेकिन एक चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है वो है कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि दौड़ना वॉकिंग साइकिलिंग करना स्विमिंग करना डांस करना स्किपिंग करना ये सारे एक्टिविटीज हमारे दिल और हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे दिल यानी हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े यानी हमारा लंग्स को एक्टिव रखने में हेल्प करता है तो आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बात करते हैं कि रनिंग और कार्डियो के एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को अपनी रूटीन में कैसे बैलेंस किया जाए तो दोस्तों रनिंग की एक सिंपल जो एक सिंपल एक्टिविटी है इसके लिए आपको हमेशा कोई महंगी इक्विपमेंट या फैंसी जिम की मेंबरशिप की जरूरत तो है नहीं आपको बस जूते लगाने हैं सॉक्स पहनने हैं जूते लगाने हैं कहीं सेफ जगह पर जाना है और बस आप शुरू कर सकते हैं रनिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है इसका मतलब है कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारा हार्ट हमारा दिल हमारा फेफड़ा यानी हमारा लंग्स कंटिन्यूसली काम करता है और मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने की भी डिमांड बढ़ती है रेगुलर रनिंग या जॉगिंग या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इम्प्रूव हो सकता है तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका दिल और आपका लंग फिजिकल एक्टिविटी को हैंडल करने में ग्रेजुअली बेटर हो सकता है और इसके बेनिफिट सिर्फ रनिंग का वक्त ही नहीं मिलता आपको आपकी डेली एक्टिविटीज जैसे कि सीढ़ी चढ़ना थोड़ा फास्ट चलना कोई आउटडोर एक्टिविटीज करना या लंबी वॉक करना उसमें भी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फील हो सकता है जब आपका शरीर ओवरऑल फिटनेस इम्प्रूव होता है और अब बात करते हैं कि कार्डियो का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमारे दिल के लिए है क्या।

हार्ट भी तो एक मसल ही है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्डियो एक्सरसाइज से हमारी हार्ट की जो जो क्षमता है वो एफिशिएंटली काम करने में लग जाती है। इसीलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है और हमारे दिल का रोग यानी हार्ट अटैक्स और हमारे जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बीमारियां होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

तो दोस्तों हम बात कर ही रहे थे कि कार्डियो एक्सरसाइजेस हमारे दिल के लिए कितना अच्छा है। तो ये आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ दिल ही नहीं, हमारा फेफड़ा यानी हमारा लंग्स के भी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जब कार्डियो एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी वजह से ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी एक्टिवली काम करता है। तो अगर आप रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी एंड्यूरेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। इसका मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त आप ग्रेजुअली ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और ये बेनिफिट डेली लाइफ में भी काम आता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन आप नोटिस करेंगे कि जो काम पहले थोड़ा ज्यादा टायरिंग, ज्यादा आपको थकावट महसूस होता था, वो काम आप कंपैरेटिवली बहुत ही आसान फील हो रहा है। वही है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग एंड्योरेंस। तो दोस्तों एक्सरसाइजेस का बेनिफिट सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये आपको भी पता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड और आपके मेंटल वेलबींग को भी बहुत ही बेनिफिट कर सकता है। इसीलिए रनिंग करना या वॉकिंग करने के बाद कई लोग बहुत ही मेंटली रिफ्रेश्ड फील करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है और मूड को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर आप आउटडोर रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो फ्रेश हवा, सनलाइट और सराउंडिंग्स का एक्सपीरियंस भी आपको मेंटली रिफ्रेश कर फील करा सकता है। इसीलिए अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल जारी रहा तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी या एक हेल्दी वे हो सकती है अपने माइंड को रिसेट करने की। तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हर मेंटल हेल्थ कंसर्न का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही यूजफुल पार्ट जरूर हो सकता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे गाना यू ना देखो तस्वीर बनके, जो है हनीमून फिल्म से।

तो दोस्तों आज हमने बात की कि कार्डियो एक्सरसाइज के फायदे क्या क्या होते हैं हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के लिए। तो लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले ये आपको मैं सलाह दूंगी कि आप एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण ये हमारे एरियाज में स्पेशली हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए वर्कआउट से पहले आपको लाइट वार्म अप करें और एक्सरसाइज के बाद अपने शरीर को ग्रेजुअली कूल डाउन होने दें। और रनिंग के लिए आप कंफर्टेबल प्रॉपरली फिटिंग जूते चूज कीजिए, क्योंकि अगर जूते ही अगर आपको पैर पर तकलीफ दे तो आप दौड़ें कैसे। और अगर पॉसिबल हो तो आपको कहीं सेफ और सूटेबल सरफेस पर रनिंग करें, जैसे कि ईटानगर के वासियों अभी आप आईजी पार्क पर दौड़ सकते हैं, क्योंकि उस आईजी पार्क में रनिंग का एक फुटपाथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ट्रैफिक वाले रोड पर आप हेडफोन्स लगाकर कम्प्लीटली अनअवेयर होकर ये भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कान पे एयरफोन्स लगा के आप दौड़ रही हैं तो आपको गाड़ी की हॉर्न कैसे सुनाई देगी। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट और फिटनेस बाद में। तो दोस्तों अगर हम आज की पूरी डिस्कशन को एक सिंपल फॉर्मूले में समझे तो वो कुछ ऐसा होगा, आपको मूव मोर करना है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और रिकवर प्रॉपरली। आपको एक दिन एथलीट बनने की जरूरत तो नहीं है, फिटनेस का रियल मैजिक जो कंसिस्टेंसी में है। आज 10 मिनट वॉक कीजिए, कल थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, फिर जॉगिंग, फिर ग्रेजुअली कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन। तो छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर ही तो लॉन्ग टर्म हैबिट्स बनाते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिए, एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ आपके अपीयरेंस यानी आपके रूप के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिटनेस का मतलब है अपने शरीर को और बॉडी को स्ट्रांग और केपेबल बनाना। तो दोस्तों आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात कर रहे थे हेल्थ टिप्स के बारे में। तो ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आपातकालीन भाषा में समाचार।

दुनिया का फ्यूचर बदला और कभी कभी पूरे जेनरेशंस को एक नया डायरेक्शन दिया। आज है 2 सितंबर और आज की डेट इंडिया के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी। तो चलिए आज के मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में हिस्ट्री के पेजेस को थोड़ा सा पलटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों आज इंडिया इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो नेचुरली हमारे दिमाग में तो 15 अगस्त 1947 आता है, लेकिन इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के रास्ते एक ही दिन में तो तय नहीं हुए थे। उन रास्ते में से कई इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स आए हैं, उनमें से एक है 2 सितंबर 1946। इसी दिन ब्रिटिश इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट ने काम शुरू किया। इस गवर्नमेंट का मकसद था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से फुल इंडिपेंडेंस की तरफ ट्रांजिशन करना। जवाहरलाल नेहरू इस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनके साथ कई प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स ने जिम्मेदारी संभाली। यानी इंडिपेंडेंस के कुछ महीने पहले से ही इंडियन लीडर्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे थे। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जो डेकेड्स से, सालों से कॉलोनियल रूल का अंदर था और अब धीरे धीरे अपने फ्यूचर को खुद शेप करने की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं कि इंटरिम गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है। तो इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, यानी ट्रांजिशन पीरियड की गवर्नमेंट, जो परमानेंट नहीं होती, ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट थी। तो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भारत के फ्यूचर को लेकर डिस्कशंस चल रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस भी हो चुके थे और पॉलिटिकल सिचुएशन काफी कम्प्लेक्स थी। इसी बैकग्राउंड में एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। तो 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने गवर्नमेंट में ऑफिस संभाला। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस जैसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगविजन राम, अरुणा आसफ अली और अन्य लीडर्स ने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल किए। और इस गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट मैसेज था कि भारत को ग्रेजुअली इंडियंस के थ्रू गवर्न करने की डायरेक्शन में ले जाना। तो नेहरू ने उस वक्त कहा था कि फाइनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट और फुल इंडिपेंडेंस था और सिर्फ एक साल से भी कम समय बाद 15 अगस्त 1947 में भारत का इंडिपेंडेंस हुआ। तो 2 सितंबर 1946 हमें इंडिया फ्रीडम जर्नी के एक इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जो आप सुनेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, ये फिल्म है हम आपके हैं कौन का आइकॉनिक गाना, तो शायद आप सभी को ये पसंद आए।

तो दोस्तों आइए, आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में, जहां हम बात कर रहे थे आज के दिन यानी आज के तारीख के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो हमने जाना कि भले ही हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हमें हमारा पहला इंटरिम गवर्नमेंट बना 2 सितंबर 1946 को। तो दोस्तों बात करते हैं सितंबर 2 के सबसे ग्लोबली सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में। तो 2 सितंबर 1945 आज से 81 ईयर्स अगो इसी डेट पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ था। जापान ने फॉर्मल सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किया, साइनिंग यूएसएस मिजोरी पर टोक्यो बे में हुई और इसके साथ वर्ल्ड वॉर टू का फॉर्मल कंक्लूजन हुआ। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में शुरू हुआ था, इसने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई रीजन्स को डीपली इफेक्ट किया। 6 साल तक दुनिया ने वार देखी, डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट और एनॉर्मस ह्यूमन सफरिंग देखी। और फिर 2 सितंबर 1945 को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट ने उस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर दिया और उसे ऑफिशियली मार्क किया। तो दोस्तों वार का एंड सिर्फ बैटल फील्ड पर जंग खत्म हो जाने से नहीं होता, उसके बाद और एक डिफिकल्ट सवाल आता है, अब दुनिया को हम रीबिल्ड कैसे किया जाए। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ। कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन करनी थी, मिलियंस ऑफ लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए थे और वो अपनी जिंदगी को दोबारा बिल्ड करना चाहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, दुनिया को फ्यूचर में एक ऐसे मैसिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नए फ्रेमवर्क्स की भी जरूरत थी। इसी पोस्ट वॉर पीरियड में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया था। आज हम यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस का ग्लोबल कोऑपरेशन को देखते हैं और उनकी ग्लोबल कोऑपरेशन के इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स के रूप में देखते हैं। और अब इंटरेस्टिंग कनेक्शन है इंडिया से भी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही अलग अलग थिएटर्स में अलाइड फोर्सेस के साथ उन्होंने जंग लड़ी। इंडियन सोल्जर्स ने नॉर्थ अफ्रीका, इटली के लिए, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में कैंपेन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया उस वक्त तो इंडिपेंडेंट नहीं था, इसलिए जब हम वर्ल्ड वॉर टू की ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन कंट्रीब्यूशन को भी उस बड़े कहानी का इम्पोर्टेंट पार्ट समझना चाहिए। और वार के बाद दुनिया में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ मूवमेंट्स और भी ताकतवर हुए। एशिया और अफ्रीका के कई कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस की डायरेक्शन में अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को और स्ट्रांग किया और इंडिया भी इसी लार्जर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा था। और अब थोड़े से टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1969 को UCLA में कंप्यूटर्स के बीच डेटा ट्रांसफर के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में से एक हुआ था। ये वो पीरियड था जब मॉडर्न इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी अपनी इन्फेंसी में थे और हमारे स्मार्टफोन्स पर SMS भेज देते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, दुनिया के दूसरे कॉर्नर में किसी दूसरे पर्सन से इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते थे। लेकिन इंटरनेट का जर्नी तो एकदम तो ऐसा नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत कई सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल

डेवलपमेंट हुआ था, और 2 सितंबर उसी इवेंट का अर्ली नेटवर्किंग के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से काउंट किया जाता है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागेन भाषा में समाचार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: से आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने शुरू मुलगता प्रोग्राम मुखोगी लायु बेनताम के नी राजीव राय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मयो संगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चामिंगुला लखे ने नेबे समिट दोंगपामगा किर्गिस्तान के कैपिटल बिशेक लो दोंगपामगेन खुबेला मिपा दुखु मोलुमनंग लखेन गो बरे बाम संगपाम दोखुला नि आलमाने टेररिज्म सम मतरला जुकेला अरे ने अचोकबे कादरताबाया ने ओक रिक्रूटमेंट मया

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आपके रेडियो साथी आरजे लूसी। आइए चलिए सुनते हैं आज का वेदर अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ईटानगर कैपिटल रीजन की। आजकल ईटानगर में वेदर का ओवरऑल पैटर्न क्लाउडी और ह्यूमिड रहने वाला है और बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म के चांसेस भी बने हुए हैं। 2 सितंबर के फोरकास्ट के मुताबिक ईटानगर में सुबह के कुछ घंटों में थंडरी शावर्स हो सकते हैं और आफ्टरनून को कई एरियाज में थंडरस्टॉर्म डेवलप होने के चांस है। तापमान लगभग 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, इसलिए अगर आप सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी अम्ब्रेला या रेन प्रोटेक्शन के साथ एक सेंसिबल साथ ले जाना एक सेंसिबल आइडिया है। और अगर आसमान सडनली अगर काले बादल छाए तो ठंडा सुनाई देने लगे तो लाइटनिंग एक्टिविटी अगर भी बढ़ जाए तो ओपन एरियाज में आपको अननेसेसरीली रुकने से आप बचिए। अब बात करते हैं पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट की। पापुमपारे और आसपास के एरियाज में भी मॉनसून कंडीशंस के इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्लाउडी स्काइज, इंटरमिटेंट रेन और थंडरस्टॉर्म जैसे कंडीशंस पॉसिबल है। पहाड़ी इलाकों में वेदर कभी कभी बहुत रैपिडली चेंज हो सकता है। एक मिनट आसमान रिलेटिवली क्लियर हो तो और कुछ देर बाद काले बादल और हैवी बरसात। इसलिए अगर आपको पापुमपारे की रूरल और या पहाड़ी इलाकों में अगर आपको ट्रैवल करना है तो जर्नी से निकलने से पहले आप अपने लोकल वेदर अपडेट्स और रोड कंडीशन जरूर चेक कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब बारिश बहुत ही हैवी हो तो उसके बाद आसमान को मत देखिए क्योंकि ग्राउंड कंडीशंस भी तो खराब हो सकते हैं। इतनी बारिश थी है, क्या पता है कि लैंडस्लाइड भी हो जाए। तो रोड साइड वाटर लॉगिंग, लूज सॉइल, फॉलिंग रॉक्स या लैंडस्लाइड के साइंस को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान वेदर काफी डायनामिक हो सकता है। स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। ईस्टर्न अरुणाचल हो या सेंट्रल एरियाज, फुटहिल्स हो या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, हर जगह वेदर कंडीशंस सेम तो नहीं होती। इसलिए जब हम बोलते हैं कि अरुणाचल में बारिश होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही जैसे रेनफॉल होगी। कहीं लाइट हो सकती है, कहीं हैवी हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में रेनफॉल के साथ साथ लैंडस्लाइड का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। आईएमडी के करंट वार्निंग्स में अरुणाचल प्रदेश के लिए हैवी बरसात, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग को लेकर अलर्ट्स दिए गए हैं, इसलिए लोकल एडवाइजरीज को सीरियसली लेना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: और उसके अंतर्मन की
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की

0: यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
0: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
0: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मुज, असालवे, ज़िरफ्त, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
7: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी।
6: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में

0: कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गा यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गईं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. U.S. begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran. Explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold.

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर की।
1: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को आइए हम यहाँ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो शायद आपको खास कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अरुणाचल प्रदेश को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो शायद वो वर्ड होगा पोटेंशियल। हमारे पास बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, नदियां हैं, रिच बायोडायवर्सिटी, फर्टाइल वैलीज हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक यंग पॉपुलेशन जो नए अपॉर्चुनिटीज चाहती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं बिना एनवायरमेंट को अननेसेसरीली डैमेज किए। आज हेलो ईटानगर में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर पोटेंशियल की। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी फास्ट फ्लोइंग नदियां और स्ट्रीम्स हैं, इसीलिए हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए स्टेट को नेचुरली सिग्निफिकेंट पोटेंशियल वाला रीजन माना जाता है। हाइड्रो पावर का बेसिक कंसेप्ट काफी सिंपल है। जब पानी बहती है तो उनकी एनर्जी को टर्बाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर रेस्पॉन्सिबली डेवलप किया जाए तो हाइड्रो पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बन सकती है। और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिर्फ घर में लाइट होना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एजुकेशन से है, हेल्थ केयर से है, स्मॉल बिजनेसेस से है, इंडस्ट्रीज से है, डिजिटल कनेक्टिविटी से है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही से तो डिबेट शुरू होती है। तो जो लोग लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश के नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाना चाहिए। अगर स्टेट के नदियों में इनॉर्मस एनर्जी पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को कम्प्लीटली अनयूज्ड क्यों रखा जाए? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स और कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने में उनका इनडायरेक्ट रोल हो सकता है, लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डैम्स को सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर के रूप में ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन फिर बात है दूसरी तरफ, जो लोग डैम्स को अपोज करते हैं उनकी कंसर्न्स को भी सीरियसली समझना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश कोई ऑर्डिनरी, कोई मामूली सा लैंडस्केप नहीं है। यहाँ जंगल है, वाइल्ड लाइफ, नदियां और इंडिजिनस कम्युनिटीज का बहुत ही क्लोज रिश्ता है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेगा पावर डैम्स, ये से प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट को, बहुत ही जंगलों को काट कर उन्हें क्लियर करना पड़ सकता है, लैंड एक्विजिशन का इश्यू हो सकता है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान लोकल इकोसिस्टम्स पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन कम्युनिटीज की जिंदगी जनरेशन से किसी कोई जमीन, नदी या जंगलों के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से लोकल लोगों को रिलोकेट करना पड़े तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। उनकी कल्चर, उनकी नेटवर्क, लाइवलीहुड और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनका घर, ये भी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एंटी डैम मूवमेंट का कोर कंसर्न सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, होना जरूरी नहीं है। कई बार मैसेज ये होता है कि डेवलपमेंट चाहिए लेकिन सस्टेनेबल और फेयर डेवलपमेंट चाहिए। तो दोस्तों, क्या आइए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसी के बाद जारी रखेंगे हमारा आज का हेलो ईटानगर सेगमेंट, जहां हम बात कर रही थी प्रो डैम और एंटी डैम एक्टिविस्ट के बारे में।

0: तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जहां आज हम बात कर रहे थे अरुणाचल की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के बारे में और ये प्रो डैम और एंटी डैम के बीच के डायलॉग्स और सोल्यूशन क्या है। तो मेरा मानना है कि डिबेट को डैम या नो डैम के बाइनरी में रखने के बजाय एक तीसरा सवाल पूछना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट, कहां, किस स्केल पर और किस कंडीशंस के साथ। हर नदी पर डैम बनाना जरूरी नहीं है और हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना भी शायद एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। हमें प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट असेसमेंट करना होगा। कुछ एरियाज में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट सूटेबल हो सकता है, कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में डेवलपमेंट अवॉइड करना बेटर हो सकता है, या डिसीजन साइंटिफिक स्टडीज, लोकल कंसल्टेशन और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल असेसमेंट के बेसिस पर होना चाहिए। तो दोस्तों बड़े डेवलपमेंट डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पर तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। साइंस और डाटा को सेंटर स्टेज पर होना चाहिए। किसी भी मेजर डैम प्रोजेक्ट से पहले डिटेल्ड एनवायरमेंटल असेसमेंट होनी चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट कैलकुलेट करना इनफ नहीं है, हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना जंगल, कितना फॉरेस्ट इम्पैक्ट होने वाला है इस डैम से, लोकल बायोडायवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिवर के इकोसिस्टम का क्या होगा, और डाउनस्ट्रीम के लोग, जो डाउनस्ट्रीम एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके गांव, उनकी कम्युनिटीज पर क्या इम्पैक्ट होगा, और सेस्मिक और जियोलॉजिकल रिस्क क्या है, क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर सिनेरियोस को कैसे कंसिडर किया, कि क्या उन्हें कंसिडर किया गया है कि नहीं, और अगर प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है तो 30, 20, 40, 50 साल के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी कहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट अप्रूव होने से पहले पूछे जाने चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकल लोगों को डेवलपमेंट का सब्जेक्ट नहीं, उन्हें स्टेक होल्डर समझना होगा। अगर किसी एरिया में प्रोजेक्ट प्रपोज है तो वहां के लोगों, वहां के कम्युनिटीज के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। सिर्फ एक मीटिंग करके कंसल्टेशन कंप्लीट कह देना तो इनफ है ही नहीं, लोगों को प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट और रिस्क दोनों क्लियरली समझाए जाने चाहिए, उनकी कंसर्न्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर रिलोकेशन या लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है तो रिहैबिलिटेशन प्लान ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब उसका बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचता है जो उस डेवलपमेंट की कॉस्ट को बियर कर रहे हैं। तो दोस्तों मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ बड़े डैम्स और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने नहीं होते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। हाइड्रो पावर इन सबको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का पूरा मॉडल एक ही रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अरुणाचल को अपने नेचुरल रिसोर्सेस को डाइवर्सिफाई करके यूज करना चाहिए। हाइड्रो पावर के साथ सोलर एनर्जी, स्मॉल स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के हेलो ईटानगर में हमने एक सिंपल लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल किए हैं कि अरुणाचल प्रदेश मॉडर्नाइज हो सकता है बिना अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को खोए बिना। मेरा जवाब है हाँ, अगर हम मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डेवलपमेंट समझे। प्रो डैम और एंटी डैम डिबेट में शायद दोनों साइड्स के पास कुछ कुछ वैलिड कंसर्न्स और आर्ग्यूमेंट्स तो जरूर है। एक साइड है डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, दूसरी साइड एनवायरमेंट, कम्युनिटी के राइट्स और इकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में बात करता है। सोल्यूशन किसी एक साइड को साइलेंस करना नहीं है, सोल्यूशन है डायलॉग, साइंस और ट्रांसपेरेंसी। तो हाँ, हमें कहना चाहिए कि हाँ हम मॉडर्न हुए हैं, लेकिन हमें अपने फॉरेस्ट, रिवर, कल्चर और आइडेंटिटी को साथ लेकर चलना सीखना। तो मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसी थॉट के साथ आज का कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त हुआ। हमसे जुड़े रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने अरुणाचल को समझने और समझने की कोशिश करते रहिए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को

0: दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातोत्तर, सुपर स्पेशलिटी

0: पीएचडी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट।
1: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियंस की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary. Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Raipur. The convocation will mark a significant milestone.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। तो दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड, हॉलीवुड, OTT सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया के लेटेस्ट एंटरटेनमेंट के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो आज का एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि थिएटर्स में क्या चल रहा है, कौन से न्यू फिल्म्स रिलीज हो चुकी है, कौन से फिल्म के लिए टिकट बुक करनी चाहिए, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर इस वक्त क्या देख सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग है हम एक सेगमेंट पेश करेंगे जहां हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के उभरते एंटरटेनर्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं थिएटर्स की तरफ। अगर आप बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के फैन हैं तो सितंबर की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की। ये यश की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और कास्ट में यश के साथ कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे नेम्स हैं।

और टॉक्सिक के अराउंड एक्साइटमेंट तो रिलीज से पहले ही काफी हाई थी, लेकिन रिलीज के बाद ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड रहा है। कुछ व्यूअर्स ने यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शंस और विजुअल्स की को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि स्क्रीन प्ले और पेसिंग का कहानी को थोड़ा डाउटफुल है। तो अगर आप यश के फैंस हैं और लार्ज स्केल एक्शन सिनेमा पसंद करते हैं तो टॉक्सिक अभी भी थिएटर में चल रही है। लेकिन मूवी देखने से पहले एक चीज याद रखिए, ट्रेलर्स और रिव्यूज अलग चीज है, एक्चुअल मूवी एक्सपीरियंस अलग है।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके? ना। पहले बचत।
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि
3: लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

तो श्रोताओ, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, जहां हम बात कर रहे थे कि अगर आपको बड़े पर्दे पर फिल्म्स देखना पसंद है तो आप क्या देख सकते हैं। और मार्वल फैंस के लिए आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्टारिंग टॉम हॉलैंड इंडिया में 30 जुलाई को रिलीज हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी और अभी कुछ सिनेमाज में शोज मिल रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 500 करोड़ के मार्क की तरफ बढ़ रही है। और स्पाइडरमैन का इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्शन तो अलग ही लेवल है, क्योंकि फिल्म आई थी हिंदी, तमिल, तेलुगु और दूसरी भाषाओं ऑप्शंस के साथ। फिल्म को लेकर इंडिया में वाइड रिलीज मिला। अगर आप अपने बिग स्क्रीन पर स्पाइडरमैन का वेब स्लिंगिंग एक्सपीरियंस मिस कर दिया है तो अपने लोकल सिनेमा डिस्ट्रिक्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन को मोबाइल स्क्रीन पर देखना और जायंट स्क्रीन पर वेब के साथ उड़ते हुए देखना, दोनों का वाइब अलग ही है। और अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो इंसीडियस आउट ऑफ द फर्थ भी अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 21 अगस्त को रिलीज हुई थी और इंसीडियस फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक सुपर नेचुरल चैप्टर और हॉरर चैप्टर लेकर आई है। तो अगर आप हॉरर फैन हैं, हेडफोन्स लगाकर रात को अकेले देखने की जगह थिएटर में फ्रेंड्स के साथ देखना शायद बेटर आइडिया हो। और हाँ, जंप स्केयर्स के वक्त जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उस यूजुअली बोलता है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। और अब जाते हैं बहुत बड़े अपकमिंग रिलीज पर, जो है मिर्जापुर द मूवी। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की दुनिया अब ओटीटी स्क्रीन से निकलकर बिग स्क्रीन पर आ रही है। फिल्म 4 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।

0: आप देखेंगे पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, विजय राज और फ्रेंचाइज के कई जाने माने चेहरे इस फिल्म के फैंस के लिए एक मेजर थिएट्रिकल इवेंट बन सकती है। फिल्म को CBFC से ए सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम 3 घंटे से भी ज्यादा है, तो मिर्जापुर फैंस के लिए गुड्डू भैया और कालीन भैया के फैंस रेडी हो, सितंबर की शुरुआत ही इस इंटेंस मूवी से होने वाली है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक गीत जो आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा।

0: It's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
1: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मेरे घर पर ही कुछ अच्छा देखूंगा, तो डोंट वरी। ओटीटी का रिमोट पकड़िए, बिकॉज सितंबर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से फुल ऑन फॉर्म में है। सबसे पहले है नेटफ्लिक्स, यहाँ एक फ्रेश हिंदी रिकमेंडेशन है गांधरी, तापसी पन्नू ट्रेलर। ये फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो रही है। फिल्म में तापसी पन्नू एक माँ का किरदार निभा रही है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस फेस करती है। नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक फिल्म कनिका ढिल्लो ने राइट और प्रोड्यूस किया है और देवशीष मखेजा ने डायरेक्ट की है। और नेटफ्लिक्स पर है द जेंटलमैन सीजन 2। गाय रिची स्टाइलिश क्राइम वर्ल्ड का नेक्स्ट चैप्टर 3 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। अगर आपको क्राइम, डार्क ह्यूमर, स्टाइलिश कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये वॉच लिस्ट में जा सकता है। और अगर आपको कोई सीरियस क्राइम थ्रिलर से ज्यादा कॉमेडी चाहिए तो नेटफ्लिक्स पर धमाल 4 भी अवेलेबल है। अजय देवगन, अरशद वारसी के साथ धमाल यूनिवर्स का एक बार फिर कॉमेडी और केओस लेकर आ रही है। तो वीकेंड प्लान सिंपल है, फैमिली के साथ मूवी नाइट, पॉपकॉर्न और धमाल। बस रिमोट के लिए फैमिली में वार शुरू मत कर देना। अब चलते हैं अमेजॉन प्राइम की तरफ। सितंबर के फर्स्ट वीक में प्राइम वीडियो पर भी कुछ इंटरेस्टिंग एडिशंस हैं। अगर आप एक्शन के फैन हैं तो नीगली द रीचर स्पिन ऑफ एक इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल पिक है। और प्राइम वीडियो पर द ग्रैंड टूर का न्यू चैप्टर भी आ रहा है, जो कार लवर्स और एडवेंचर एंटरटेनमेंट फैंस को अट्रैक्ट कर सकता है। इंडियन लैंग्वेज कॉन्टेंट की तरफ देखने तो जगह में संगीतम भी सितंबर 4 को प्राइम वीडियो पर शेड्यूल टाइटल्स में है। तो प्राइम वीडियो सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये वीकेंड वॉच लिस्ट रेडी है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और अब दोस्तों आज के फिल्मी गपशप का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि एंटरटेनमेंट सिर्फ बॉलीवुड स्टार तक लिमिटेड नहीं है। आज के जेन ज़ी टैलेंट सोशल मीडिया से डायरेक्टली नेशनल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, क्रिएटर इकोनॉमी और फिर नेशनल एंटरटेनमेंट शोज इसी ट्रेंड का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश की गेनी कामगी, गनी कामगी जिसको पॉपुलरली हम ऑनलाइन जानते हैं लूसिड फॉर यू, अरुणाचल प्रदेश की डांसर, सिंगर और कंटेंट क्रिएटर है। उनकी सोशल मीडिया जर्नी काफी स्ट्रांग थी। उनका एक वायरल डांस रिपोर्टेडली 100 मिलियन प्लस व्यूअर्स क्रॉस कर चुका है और इसी मैसिव ऑनलाइन पॉपुलैरिटी ने उन्हें नेशनल ऑडियंस के सामने और विजिबल बनाया। फिर आई उनकी

अपीयरेंस इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन टू पर। यहां एक क्विक करेक्शन भी कर दे दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई जगह इसे इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन गेनी की रीसेंट अपीयरेंस समय रैना के इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन टू में हुई थी और उन्होंने स्टेज पर एक अनरिलीज सॉन्ग परफॉर्म किया जो उनके ब्रदर ने कंपोज किया और उनके भाई भी सिंगर है जिनका नाम है गेली कामकी और उनकी सिंगिंग कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस को जजेस ने अप्रिशिएट किया और रिजल्ट क्या था, 10 out of 10 पैनल ने उन्हें परफेक्ट स्कोर दिया। तो गेनी की स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एक ट्रेन्ड डांसर है, सिंगर और डिफरेंट डांस फॉर्म्स के साथ कनेक्टेड रही है। उनकी ऑनलाइन पर्सनालिटी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और आज की जेंजी ऑडियंस को परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी अट्रैक्ट करती है। आप कैमरा के सामने नेचुरल रहो, अपनी पर्सनैलिटी को मत छिपाइए और आपका टैलेंट जेन्यूनली एंजॉय कीजिए। और दोस्तों मेरे लिए ये पार्ट पर्टिकुलर स्पेशल क्यों है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टैलेंट की अभी कमी है ही नहीं। टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, डांस है, फैशन है, कॉमेडी है, स्टोरी टेलिंग है, लेकिन नेशनल विजिबिलिटी हिस्टोरिकली एक चैलेंज रही है। सोशल मीडिया ने इस इक्वेशन को चेंज किया है। आज ईटानगर में बैठा हर क्रिएटर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या किसी शहर के ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। और इसी ग्रोइंग जेंजी का एंटरटेनमेंट कन्वर्सेशन में हम चेलो मेमे के नाम को भी अरुणाचल के व्यूअर्स के बीच डिस्कस हो रही है। आपने शायद उनका नाम मेंशन किया होगा और नेचुरली लोकल ऑडियंस के लिए ये काफी एक्साइटिंग है और अरुणाचल के यंग परफॉर्मर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी, क्योंकि चेलो मेमे जिसे आप इंस्टाग्राम में जानते हैं बराते के नाम से, उन्होंने भी सीजन टू इंडियाज गॉट लैटेंट में गई और वो उस शो की विजेता रही है। तो ये बात हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अरुणाचल के यंग क्रिएटर्स को नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर देखना खुद में एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर आपके पास उनके परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट एपिसोड या डिटेल्स याद है तो फ्यूचर फिल्म में गपशप में उसी पर डिटेल सेगमेंट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं फिल्मी गपशप का ये कार्यक्रम, ये गीत जिसे आप सुनेंगे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
5: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
4: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस

0: से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4,000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जल स्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary. Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super speciality, doctoral and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Indian embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Humaltar area of Kathmandu Valley. The Indian experts are working with their counterparts to speed up the processing of DNA samples collected from flood-affected areas and help establish the identities of victims.

0: and missing persons. The deployment of Indian forensic team is part of ongoing efforts to support Nepal in the aftermath of the recent flash floods, which caused significant loss of life and left several people unaccounted for. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. India and the World Bank Group have discussed about expanding their partnership beyond traditional lending with a sharper focus on infrastructure finance, digital public infrastructure, tourism and the mobilization of private capital. Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank Group President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, U.S. U.S. has begun fresh strikes on Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, targets inside Iran. Iranian media reported that explosions were heard in Bandar Abbas, Hormuz, Asalue, Zeroft, Kashim Island, Konark, Jabahar, Jask, Sirik and Lavan. The U.S. Central Command, CENTCOM, said it completed the wave of strikes against Iranian military targets, which included air defense sites, mine-laying capabilities and communication sites, among others. And in badminton, Indians' leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen, Guangdong Province. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों चलिए बिना रुके आपको ले चलते हैं आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम की ओर, जो है रेडियो ऑन डिमांड।
2: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का, जिसका इंतजार हम सभी को रहता है। रेडियो ऑन डिमांड ये वो कार्यक्रम है जहां म्यूजिक का सिलेक्शन हम नहीं करते बल्कि आप करते हैं। आप हमें अपनी फेवरेट सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भेजते हैं और स्पेशल वंस के लिए किसी को डेडिकेट करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी फेवरेट मेलोडीज आप तक पहुंच सके। और सच कहूं तो 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम की रेडियो कम्युनिटी से मिला वाला प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आपके एसएमएस, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशन और आपका ही सपोर्ट इस कार्यक्रम को इतना खास बनाता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी हमारे पास बहुत सारी गीतों की फरमाइश आ जाती है। हम चाहते हैं कि हर श्रोता लिसनर्स की रिक्वेस्ट हम प्ले करें, लेकिन लिमिटेड समय की वजह से हर सॉन्ग को पूरा प्ले करना कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट थोड़ी लेट हो जाए या हम उससे पूरा प्ले नहीं कर पाए, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता की फरमाइश को इंक्लूड करें और आपके मनपसंद गीत आप तक लेकर आए। तो चाहे आप ईटानगर से सुन रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के किसी कॉर्नर से, या असम या किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी भी हिस्से से, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी फेवरेट सॉन्ग और आपका रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की पहली फरमाइश आई है हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के रहने वाले श्रोताओं से, जो कि झारखंड से है, और श्रोता के नाम है शिवा गोप, कपिल गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपी गोप, दीपाली गोप, जो उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है और इस गीत का नाम है चन्ने के खेत में।

कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम से टेंशन ग्रो रोजमेरी तेरोंगपी और सालो एग्रो से उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जिसका नाम है प्यार कभी ना कम करना, जिसे गाया है बप्पी लहरी आशा भोसले ने फिल्म। तो ठीक है, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा नगमा।

आइए बढ़ते अगली फरमाइश की ओर, जो है रोज मेरी तिरोंगपी जी से, नीलिका ग्रोपी जी से, जो कि लंकासम कार्बी आंगलोंग के रहने वाले हैं। तो रोज मेरी जी तिरोंगपी और नीलिका ग्रोपी जी की फरमाइश पर ये गीत जो है मशहूर फिल्म से, ओ यारा कैसी है तेरी बेवफा।

0: आइए दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर।
1: आप चाय मुझे दूसरे कप में दीजिए ना, थोड़ी देर पहले तेंजिन ने इसमें से नहीं पिया था क्या?
2: भाई साहब, बस के लास्ट सीट में एक जगह खाली है, आप बैठ सकते हैं।
1: ओ तेंजिन, तुम्हारे पास में है ना ये सीट, तुम बैठो, वैसे भी मैं अगले स्टॉप में उतर ही जाऊंगा।
3: तेंजिन एक साधारण स्टूडेंट है, पर वो HIV पॉजिटिव है, इसीलिए तेंजिन को हर कोई एक अलग नजरिए से देखते हैं। पर यामी तेंजिन को बड़े प्यार और आदर से बुलाती है, क्योंकि यामी को पता है प्यार और सम्मान भरा अच्छा व्यवहार HIV एड्स रोगी का अधिकार है। आप भी HIV एड्स रोगियों को घृणा के नजर से ना देखें, बल्कि उनको उतना ही सम्मान दें जितना एक आम इंसान को दिया जाता है। अपने HIV स्टेटस को जानने के लिए नजदीकी हॉस्पिटल के ICTC पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें आया है सुनीता बसुमतारी से, जो असम के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स यानी

अमोल, बिमोल, भाईकोन, रमेश, लक्की, रुनु और देवशीष को डेडिकेट किया है और ये गीत का नाम है ओ अजनबी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए श्रोताओं, अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। अगला फरमाइश हमें आया है प्रिया बोरो जी से, जो कि असम के रहने वाले हैं। तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके फरमाइश भेजने के लिए। और आपकी ये गीत की जो चॉइस है, मुझे भी काफी पसंद है। ये गीत भी है फिल्म मैंने प्यार मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से, और इस गीत का नाम है कसम की कसम। आइए चलते सुनते हैं प्रिया जी की फरमाइश पर।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
3: नर्स दीदी, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
2: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
3: सच में दीदी?
2: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें आया है सोम तुदू से, जो कि विश्वनाथ चरियाली के रहने वाले हैं। उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो है गजनी फिल्म से। इस गीत का नाम है गुजारिश।

श्रोताओ आइए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश आया है हमें अमल बबसुमतारी जी से, जो कि ये गीत को अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। उनके दोस्तों का नाम है भाई कौन, बिमोल, सुनीता, देवशीष, रमेश और लकी। तो अमोल बबसुमतारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर से शाम से हमारे रेडियो पर आपने अपनी फरमाइश भेजी है। तो आपकी फरमाइश पर आइए, आपका गाना पेश है। ये है ओ मम्मी मम्मी, इस गीत का नाम है।

श्रोता, आइए बिना रुके हम बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि आज का कार्यक्रम रेडियो इन सेगमेंट काफी हेक्टिक है। आप सभी की फरमाइश हम पूरा करना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी अमोल बसुमतारी जी या प्रिया बोरू जी या सुनीता बसुमतारी जी की तरह आप हमें अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर हमें SMS कर सकते हैं। नंबर है 9436887808 पर। दोबारा रिपीट कर दूं, नंबर है 9436887808 पर। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश हमें भेजा है रुनू पात्रो जी, रमेश पात्रो जी एंड लकी पात्रो जी, जो कि गोलाघाट असम के रहने वाले हैं। उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कहानी
4: श्रोता, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। चलिए बढ़ते हैं, अभी हम इस गीत की फरमाइश को लेकर आज हम बात करेंगे। ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कहा है कि नमस्कार आरजे जी, आज विश्व नारियल दिवस है और इस अवसर पर ये गीत हमें सुना दीजिए। और इस गीत का नाम है ए बाबू ले लो ना नारियल। तो इसे आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। तो आइए चलिए, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज कुछ नारियल दिवस भी है, तो आप सभी को नारियल दिवस की ढेर सारी बधाइयां। तो चलिए इसकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।
5: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को

कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता जी कालो। जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी और उसके लिए आरजे कानिक स्टूडियो पर पहुंच चुकी है, तो मुझे दीजिए आज्ञा। शुभ दिन, नमस्कार।

0: श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को रोकने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि 19 शहरों में खुदरा बिक्री के लिए 30 से अधिक ट्रकों को लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार नाशिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गया है। इसे दिल्ली NCR क्षेत्र के अलावा वाराणसी, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया है। मंत्रालय ने बताया है कि 840 मीट्रिक टन प्याज चेन्नई पहुंच चुका है। इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। उधर सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव मदद कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यू जिन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से 14-21-7-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोनाकोन साइहेंग और तोनिचा साइहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी में हर पल एक नई शुरुआत का मौका देता है। कभी कोई पल हमें कुछ नया सिखाता है तो कभी कोई छोटी सी खुशी हमारे पूरे दिन की खूबसूरत बना देती है। इसलिए बीते हुए पलों को पीछे छोड़कर हमेशा एक नई उम्मीद और एक नई मुस्कान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच और नई ऊर्जा के साथ अब वक्त है आज के हमारे दूसरे प्रसारण सभा का। उम्मीद है अब तक का सफर आपको पसंद आया होगा और आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे लूसी नालो के साथ और इस सभा की मेजबानी कर रही हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी गीची कनिक।

आपको बता दूं इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। दोस्तों इसी के साथ अब समय हो चला है हमारे खास कार्यक्रम फिल्मी लहर का। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मों की दुनिया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, पुराने गीतों की मधुर यादें, नई संगीत की ताजगी और सिनेमा से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि फिल्मी लहर में संगीत भी होगा, मनोरंजन भी होगा और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी ढेर सारी बातें भी। और दोस्तों जैसे कि कहा जाता है पुराने गीत

तो में वो खुशबू है जो बीते लम्हों को फिर से यादों में ले आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ शुरू करते हैं फिल्मी लहर, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना अलका याग्निक और आनंद राज आनंद की आवाजों में फिल्म जालदा ट्रैप से। आइए दोस्तों, अब जो अगला गीत है वो 2015 में रिलीज हुई फिल्म खामोशिया का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है और ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर हॉर

स्टोरी थी जिसमें अली फजल, सपना पब्बी और गुरमीत चौधरी लीड रोल्स में नजर आए थे। कहानी कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच एक राइटर, एक मिस्टीरियस वुमन और उसके पास के आसपास घूमती है। और दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी यादगार रहा, खासकर इसका टाइटल ट्रैक सॉन्ग जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी। म्यूजिक जीत गुनगुली ने कंपोज किया और लिरिक्स रश्मि सिंह ने लिखे थे। तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत सॉन्ग को सुनते हैं।

0: दोस्तों, अभी आप इस गीत को सुन रहे थे, अलका याग्निक, साधना सरगम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म कल होना हो से। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का हमारा फिल्मी लहर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत का।
1: You're listening to Akashwani Itanagar and this is Western Melodies with me, Kai. Up next is Man, Character, Energy, a set of tracks that brings confidence, attitude and unapologetic presence. Turn it up on the moment and let the music match your energy. This song is about confidence earned, not given. Cardi B uses bold lyrics to talk about status, attention and owning your success without apology. It's written for people who know their worth and demand space. The vibe is fiercey, dominant and high energy, perfect for stepping into your spotlight.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत

0: men's singles clash, Lakshya Sen was knocked out of the tournament after he lost against Canada's Victor Lai. And in squash, India's Anahad Singh stormed into the second round of the London Squash Classic. Reigning world junior champion Anahad eased past Egypt's Mariam Metwelli in a women's singles opening match. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दूं, अब वक्त चला है कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। और आपको बता दूं, पहला गीत आप सुन पाएंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। दोस्तों इसी के साथ ही चलिए

0: करते हैं आगे, और आपको बता दूं आप इन कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अगला कार्यक्रम प्रस्तुत है नोटिस परिचय।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हमेशा की तरह मैं तुम्बम रिबा लीली आप सभी का अपने कार्यक्रम अरुण परिचय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए अपने कार्यक्रम अरुण परिचय की इस कड़ी में मैं आप सबको अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग के अका यानी कि रूसो जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारियाँ देती हूँ। वैसे अका का अर्थ होता है पेंट किया हुआ या रंगा हुआ। ये लोग अपने शरीर को मुख्यतः काले रंग में रंग लेते हैं। इनकी भाषा जो है तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनके दो कबीले हैं हजारी खावा और कपास चोर्स। यह नाम असमिया लोगों द्वारा ही दी हुई है। वो अपने को लेकिन हजारी खावा कहना ही पसंद करते हैं। परंपरा से स्त्री पुरुष दोनों काले रंग से अपने चेहरे रंग लेते हैं। यह जाति 11 कबीलों में बटी हुई है और इनके 3 मुख्य प्रसिद्ध गांव हैं दी जुंगानिया, जमेरी और बुरा गांव। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आधुनिक युग में ये लोग अपने चेहरे पर काले रंग नहीं रंगते हैं। यह लोग शेरदुकपेन जाति के पूर्वी भाग में खारी क्राई नदी की चोटियों में रहते हैं। यह क्षेत्र लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का है। ये लोग पश्चिम में शेरदुकपेन की भूमि पर काम करते थे। इनके पूर्व में निशी, उत्तर में मिजी और दक्षिण में असम प्रदेश पड़ता है। वर्षा के दिनों में ये बेंत से नदियों पर झूले वाला पुल बना लेते हैं। इनकी जनसंख्या जो है कुल मिलाकर 8000 के करीब माने गई है। यह कामेंग जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में आबाद है। इनका संबंध असम के अहोम राजाओं से भी था ऐसा माना जाता है। यह शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाली जाति है। ये हिंदू या बौद्ध धर्म दोनों धर्मों से प्रभावित है। ये लोग कंबल और वस्त्र भूटान से एवं अपने औजार असम से खरीदते हैं और बहुत अच्छे वस्त्र भी ये लोग खुद ही बुन लेते हैं। इनके विचार से पहाड़, नदी और हवा में आत्मा वास करती है। इनका रंग गोरा होता है। देखने में ये हट्टे कट्टे स्वस्थ होते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही लंबे केश रखना पसंद करते हैं। पुरुष केश घुमाकर सिर पर और स्त्रियां केश को अपने सिर के पीछे बांधती हैं। इनके घर लंबे होते हैं जो लगभग 2 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। प्रत्येक घर 3 हिस्सों में बटा होता है। गांव में इनके घर जो है तीतर बीतर बने होते हैं। इनकी अपनी पंचायत होती है। इनका प्रधान बूढ़ा गांव बूढ़ा होता है। अपने विवादों को ये परंपरागत नियमों से आपस में ही तय करना पसंद करते हैं। इनकी मुख्य पैदावार चावल, मक्का और आलू है। ये मुख्य रूप से झूम खेती करते हैं। सुअर तथा गाय का मांस इनका प्रिय भोजन है। इनके यहाँ चचेरे भाई बहन का विवाह अच्छा माना जाता है। इनकी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार की है और इनकी पोशाक तथा आभूषण भी तिब्बतियों से काफी मिलती जुलती है। पुरुष लंबे कपड़े लपेटकर कंधे के ऊपर बांधते हैं, ऊपर से जैकेट भी पहनते हैं। कानों को बांस की तीलियों से छेद कर खोखले बांस की नली डाल लेते हैं। अपने पास सदैव दाव रखते हैं हथियार के तौर पर, जो इनके कंधे पर झूलता रहता है। अपने साथ ये धनुष बाण भी रखते हैं। स्त्रियां भी लंबा चौड़ा कपड़े लपेटकर कंधे पर बांधती हैं। इनकी जैकेट अपेक्षाकृत लंबी होती है। ये सिर पर बांधने के लिए एक लंबा कपड़ा अवश्य रखते हैं। कभी कभी बांस की बनी गोल टोपियां सिर पर लगाते हैं। टोपी को सजाने के लिए मुर्गे के देने अथवा बांस के पत्तों को टोपी के अगले हिस्से में फंसा देते हैं। अका स्त्रियां विभिन्न रंगों की मूंगों की माला बहुत पसंद करती हैं। चांदी के बने बड़े बड़े लटकते कर्णफूल और गले में चांदी की सिकड़ी पहनती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदना गोदवाती हैं। ये लोग मृत व्यक्ति के साथ इनके प्रयोग में आने वाले सामान भी साथ में दफन करते हैं। त्योहार नेचीदो इन

का प्रमुख त्योहार है। यह अका जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार हर वर्ष नवंबर के महीने में सामूहिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है। फसल कट जाने के एक दिन बाद गांव बूढ़े तथा सम्मानित लोग एक जगह बैठकर इनकी पूजा की तिथि तथा तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हैं। आसपास के ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा की तिथि निश्चित की जाती है। इसके बाद सब लोग मिलकर पूजा का चुनाव मुर्गी की बलि चढ़ाकर उसके कलेजे की परीक्षा से भी करते हैं और प्रतिवर्ष नया मुख्य पुजारी चुना जाता है। मुख्य पुजारी जिसे मुगो कहते हैं, उनका चुनाव के बाद लोग 5 सहायक पुजारियों का भी चुनाव करते हैं। पूजा के प्रथम दिन मुख्य पुजारी अपने सहायक पुजारियों के साथ गांव की 15 बार परिक्रमा करते हैं। तलवार भांजते हुए वे चिल्लाते चलते हैं कि ए बुरी आत्माओं, तुम इस गांव को छोड़कर बाहर चले जाओ। पुजारियों के इस काम में गांव का मुख्य वर्ग भी साथ देते हैं, पुरुष वर्ग भी। उनके साथ पूजा में बलि चढ़ाए जाने वाले जानवर जैसे मिथुन, बैल, सुअर, बकरा, मुर्गा, अंडा आदि पूजा स्थल पर लाए जाते हैं। इन पशु पक्षियों को सामूहिक रूप से खरीदा जाता है। इसके साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री एवं खाद्य पदार्थ, चावल का आटा, शराब, शकरकंद आदि भी पूजा स्थल पर लाए जाते हैं। गांव की परिक्रमा के बाद पुजारी, मुख्य पुजारी, निचितों की तथा अन्य सहायक पुजारी दूसरे देवी देवताओं की पूजा विभिन्न मंत्रों और स्त्रोतों से आरंभ करते हैं। पुजारी के आदेश पर वहां उपस्थित लोगों में से कोई व्यक्ति उन जानवरों की बलि अलग अलग देवताओं के नाम चढ़ाता है। यह बलि दांव से काटकर या धनुष बाण से निशाना लगाकर दी जाती है। उस समय पुजारी या अन्य सहायक पुजारियों की सहायता के लिए 5-7 नौजवानों को चुनते हैं। पूजा के दिनों में मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और अतिरिक्त सहायक पुजारी अपने या दूसरों के घरों में सोने नहीं आते। उनके विश्राम के लिए गांव के अंदर ही एक अस्थायी घर बनाया जाता है। निचिदों के पूजा के समय वही देवी और देवताओं की अलग अलग पूजा की जाती है। पूजा के पहले दिन गांव की परिक्रमा करके लौटकर गांव के बीच में 4 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसमें सबसे पहले कुत्ते की बलि, फिर सुअर और बकरे की बलि दी जाती है। बलि के कुत्ते को बहुत दूर फेंक दिया जाता है। उसके बाद चढ़ाए गए सभी जानवरों का मांस खाया जाता है। पहले ही दिन जमुमुख पूजा मलेरिया जैसे घातक रोग से बचने के लिए की जाती है। इसमें बकरा, सफेद मुर्गा और एक काली मुर्गी की बलि मंत्रोच्चारण के साथ दी जाती है। उनका विश्वास है कि देवता प्रसन्न होकर उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करेंगे। फिर जंगल में पशु और मुर्गे स्वतंत्र चरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। दूसरे दिन की पूजा पाप निवारण के लिए की जाती है। उसमें गांव के उस तरफ जिधर लोगों का आना जाना कम होता है, एक बिना बधिया बकरा, बिना बधिया सुअर और मुर्गे की बलि मंत्रोच्चारण के साथ भगवान दामुखी मुदु के नाम पर दी जाती है। इसमें गांव वालों से जाने या अनजाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी पूजा करके बलि चढ़ाई जाती है। बलि चढ़ाए गए सुअर को गांव में जंगल में फेंक दिया जाता है। और इस तरह से दूसरे ही दिन गांव के बाहर खुले मैदान में सुख वैभव की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। इसमें 2 मुर्गियों तथा 5 अंडों की बलि चढ़ाते हैं। यह पूजा मुख्यतः 2 दिन की होती है। अन्य 2 दिन निषेध पर्व के रूप में मनाते हैं। इन दिनों दूसरे गांव के आदमी इनके गांव में नहीं आ सकते। यदि भूल से कोई आ भी गया तो उसे जुर्माना देना पड़ता है।

0: प्रिय श्रोताओं, अभी आपने अका यानी कि रूसो जनजाति के लोकगीत सुने और उन जनजाति से जुड़ी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की और अरुणाचल प्रदेश के किसी अन्य अनोखी जनजाति पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम नोटिस परिचय यहीं पर समाप्त होता है। आइए आपको इस कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को।

0: श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3rd दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता दोस्तों, इस खूबसूरत दोपहर में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम सफर करेंगे हिंदी सिनेमा के 60s से 80s के उस क्लासिक दौर का, जिसके गीतों की मिठास आज भी बरकरार है। दोस्तों, उस जमाने के गीतों की खासियत ही कुछ ऐसी थी, सुरीले नगमे, खूबसूरत बोल और याद रह जाने वाली आवाजें। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से सुनते हैं उन्हीं सुनहरे दौर के कुछ बेहतरीन गीतों को, और शुरुआत करते हैं 1969 के फिल्म आराधना के मशहूर गाने रूप तेरा मस्ताना से, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। दोस्तों, आराधना फिल्म की कहानी अरुण और वंदना के प्यार से शुरू होती है, लेकिन हालत दोनों को जुदा कर देते हैं। इसके बाद वंदना अकेले अपने बेटे की परवरिश करती है और कहानी प्यार, त्याग और रिश्तों के कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को।

दोस्तों, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में एक एवरग्रीन रोमांटिक गीत। दोस्तों, आइए अब इसी सुनहरे दौर के एक और खूबसूरत गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत है छोर दो आंचल फिल्म पेइंग गेस्ट से, जिसे आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस गाने में एक प्यारी सी नोकझोंक, शरारत और रोमांस का अंदाज देखने को मिलता है। तो चलिए, इसी खूबसूरत अंदाज को बरकरार रखते हुए सुनिए इस गीत को अरुणा फिल्म 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

श्रोता दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक पर। जय दोस्तों, आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, वक्त है एक और खूबसूरत रोमांटिक गीत का, जो प्यार के उन सवालों को बयां करता है जिनके जवाब शायद कुछ दिल के पास भी नहीं होता। अगला गीत है जाने कैसे कब कहा, फिल्म शक्ति से, जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी है। तो चलिए दोस्तों, सुनिए ये मधुर सा नगमा।

0: एचआईवी का मतलब क्या है?
1: कहाँ से सीखा है ये सब? ये सब छोटे बच्चे नहीं बोलते।
2: नहीं पूछना गलत है, पूछना चाहिए। यहाँ आओ मैं बताता हूँ। एचआईवी है एक वायरस जिसके कारण एड्स जैसे और कई अन्य रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को ये हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए सही समय में एचआईवी टेस्ट करना होता है जरूरी। आज से तुम भी इन सब बातों को खुल के कहो। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? याद रखिए, आप भी अपने बच्चों की

0: परवरिश करे अच्छे से, उनके साथ एचआईवी के बारे में बातें करे खुल के। अब हर सरकारी अस्पताल में एचआईवी टेस्ट गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अधिक जानकारी के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग न करें।
1: अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों और अब बात करते हैं एक ऐसे वादे की जो सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि दिल से किया गया था। अगला गीत है दोस्तों फिल्म 1982 की ये वादा रहा का टाइटल ट्रैक सॉन्ग, जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी है। दोस्तों फिल्म में विक्रम और सुनीता एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन एक हादसा उनकी जिंदगी बदल देता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। सुनीता की याददाश्त चली जाती है, लेकिन विक्रम अपने प्यार को नहीं भूलता है। और अब क्या विक्रम अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर पाएगा? दोस्तों इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिलहाल सुनते हैं इसे फिल्म का वो खूबसूरत गीत जो मोहब्बत में किए गए एक वादे को याद दिलाता है।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम में हमारा ये खूबसूरत सफर यही खत्म होता है। उम्मीद है 60s से 80s के इन एवरग्रीन गीतों ने आपको भी खूब एंटरटेन किया होगा। लेकिन दोस्तों म्यूजिक का सिलसिला यही नहीं

0: ही रुकेगा, अगला कार्यक्रम है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। जी हाँ दोस्तों, जहां मैं आपके लिए एक के बाद एक यानी बैक टू बैक खूबसूरत हिंदी फिल्म सॉन्ग्स लेकर आऊंगी। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात, और एंजॉय कीजिए म्यूजिक का ये सिलसिला। आइए दोस्तों सुनते हैं इन गीतों को।
1: Hey you, hey you guys, listen to me, baby, say ooh la la la.

दोस्तों, इसी के साथ ही अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय

0: सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिजोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, X@AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम

0: त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
1: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले तीन दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
2: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले तीन दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, अभी आप भारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया

हुआ है FM बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ हम आपको सुनवाते हैं 90s के हिट गानों को। और दोस्तों, 90s का दौर हिंदी म्यूजिक के लिए अपने आप में खास था। रोमांस, मेलोडी और ऐसी आवाजें जिनके गीत आज भी सुनते ही एक अलग ही फील देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं 90s के इन यादगार गानों का सफर। और पहला गीत है प्यार के कागज पे। जो दोस्तों 1992 की फिल्म जिगर से इस खूबसूरत गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम ने, और म्यूजिक है आनंद मिलिंद का। दोस्तों, जिगर फिल्म की कहानी राजू और सुमन के प्यार के साथ एक एक्शन पैक्ड रिवेंज स्टोरी भी है। राजू की जिंदगी एक हादसे के बाद बदल जाती है और अपनी बहन के साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है। तो दोस्तों, प्यार और जज्बात से भरे इस खूबसूरत नगमे के साथ करते हैं 90s के सफर की शुरुआत। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आपने इस गीत को सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है से। और दोस्तों

जरा सोचिए, जब किसी के साथ प्यार हो तो दिल में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक छोटा सा सपना भी होता है, साथ चलने का, साथ जीने का और अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाने का। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब सुनते हैं अगला गीत, एक रोमांटिक गीत जो दिल की उसी छोटी सी ख्वाहिश को आवाज देता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए 90s के इस प्यारे से रोमांटिक नंबर को कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में, फिल्म खूबसूरत से।

अच्छा आकाशवाणी ईटानगर देखें तिमी लाइक अंगिन किन का बजिक समय किन का मालाय का सॉन्ग फॉला के मनोलुमपुर तो किन का मालाय का सॉन्ग खाई मी तो उसे का गैची रकिन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन का अंगिन वे अंजा यूएसए गोंगले जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स रकरा सेंट्रल बैंक गवर्नर सनफा गेबांग समन गोंगलक यूरोपियन यूनियन हेला इकोनॉमी कमिश्नर वाल्डिस डोम्ब्रोस्किस अंजा अनवे फ्रोट कदा दादला अंजा अनाथ विचिंग फुट का निरत लाई छो वन तो इंडिया ईयू मैक्रो इकोनॉमिक्स डायलॉग रकरा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अंजा अंसन हेला का किन वन इकोनॉमिक न फाइनेंशियल पार्टनरशिप अंजा अंसन मंग सिट का यंदने का विचिका लाई छो फी वनिंग रकरा विचिकरो अंजा ईयू इंडिया न

연 징문은 남만저보도록 감당농파야 비비

望万能后能别恩福州有龙汉应来应断

đàn điện khâu miệng dương mô bây nơ bụi phung phí tận khai.

0: chumna akhing nam nari na studio me chi kan ma wa pha poi ne chahang ma ne kham tai kham ti ho tu khai me sut jo ho
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है बॉलीवुड की दुनिया के कुछ इंटरेस्टिंग और फ्रेश अपडेट्स जानने का। फिल्मों से लेकर स्टार्स की पर्सनल लाइफ तक बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, आइए एक नजर डालते हैं।

दोस्तों सबसे पहली खबर है करीना कपूर से जुड़ी हुई। तो दोस्तों करीना कपूर जल्द ही एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है। मेघना गुलजार की अपकमिंग ट्रेलर डायरा में करीना एक चैलेंजिंग रोल में दिखेंगी और फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि डायरा का बॉक्स ऑफिस क्लास कॉमेडी फिल्म वाइब से होने वाला है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वाइब में करीना के ब्रदर इन लॉ कुणाल केम्मू भी लीड रोल में है। तो दोस्तों ट्रेलर लॉन्च के दौरान करीना से जब इस पारिवारिक बॉक्स ऑफिस क्लेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस सिचुएशन को लेकर अपना रिएक्शन दिया। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर करीना की डायरा और कुणाल केम्मू की वाइब में से कौन सी फिल्म ऑडियंस का दिल जीत पाती है। दोस्तों अगली खबर मानसी पारीख से जुड़ी हुई है और ये एक काफी सीरियस इंसिडेंट है। जय दोस्तों मानसी पारीख कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल चाइना बॉर्डर के पास फंस गई थी। रीजन में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के बाद सिचुएशन काफी डेंजरस हो गई थी। काफी मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद मानसी फाइनली संडे को मुंबई वापस पहुंची। घर लौटते पर उनके हस्बैंड और सिंगर पार्थिव गोहिल और

की बेटी निर्वी ने उनका वेलकम किया। यानी दोस्तों, एक तरफ यात्रा का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ इतनी डेंजरस सिचुएशन, मानसी के लिए ये जर्नी डेफिनेटली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रही होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा देओल की अपकमिंग फिल्म की। तो दोस्तों, ईशा देओल एक बार फिर कॉमेडी के मूड में नजर आने वाली है। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म मालामाल वीकली 2 को लेकर एक्साइटमेंट शेयर की है। ईशा ने कहा कि उन्हें एक ऐसा फिल्म की जरूरत थी जो फन, लाइट हार्टेड और लाफ्टर से भरपूर हो। हॉरर कॉमेडी गुनगाद और SYG सांबा राला येटी गत्तू जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद वो एक कंप्लीट कॉमिक कैपर करना चाहती थी। और दोस्तों, तब मालामाल वीकली 2 उनके पास आई। तो दोस्तों, कॉमेडी लवर्स के लिए ये फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं वेदिका पिंटो की, जो दोस्तों नेटफ्लिक्स सीरीज मुसाफिर कैफे के बाद वेदिका पिंटो ने ऑडियंस के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली है। अब वेदिका एक नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगी, जहां वो चांद मेरा दिल फेम एक्टर लक्ष्य के साथ रोमांस करती हुई दिखेगी। प्रोसित रॉय के डायरेक्शन में बन रही इस साइकोलॉजिकल ड्रामा का टाइटल अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वेदिका और लक्ष्य की फ्रेश पेयरिंग को लेकर फैंस के बीच क्यूरियोसिटी जरूर बढ़ गई है। दोस्तों, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त बॉलीवुड में कौन सी फिल्में ट्रेंड कर रही है, तो रिसेंट रिलीजेस में अल्फा, आवारापन 2 और वेलकम टू द जंगल जैसे टाइटल्स ऑडियंस के बीच डिस्कशन में है। एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या थ्रिलर, बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, अब एक अपडेट टेलीविजन लवर के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 20 को लेकर भी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर रोहित खान और रीति तिवारी, जो एक्टर पॉलिटिशियन मनोज तिवारी की डॉटर है, अपकमिंग सीजन के कंटेस्टेंट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कंटेस्टेंट्स के फाइनल लिस्ट को लेकर ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में कौन एंट्री लेगा, कौन बनेगा ऑडियंस का फेवरेट और कौन क्रिएट करेगा सबसे ज्यादा ड्रामा, ये तो शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड की दुनिया से कुछ खास अपडेट्स, और आप जुड़े रहिए अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, और हम लाते रहेंगे उसकी हर इंटरेस्टिंग खबर आप तक। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म अल्फा का ये सॉन्ग।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार।

0: श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4 बजे आप सुन पाएंगे इडोमिस में बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें। समाचारों के बाद हम फिर से आपसे जुड़ेंगे कुछ और हिंदी फिल्मी नगमों के साथ।
1: आप लुप्त होता रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम को। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब पेश है इडोमिस में श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर सियालापुचे इनी लेउलिनी एतानिचे इदुमिस्मी आहोला केजे दारगालंबो अमेरिका माचे आसेविले अंतिकोने जियानिहु फाइनेंस मिनिस्टर आलंबो दोने सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग आखागा मा इंबेगामु फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मेबुने यू इकोनॉमिक कमिश्नर आजा वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्किस को चौगा गने इंडिया यू में इदिया उन्जोता अरगाव चिप चिचगा बदा ला होगा आतिका निमे अंदुमा अभियान में छिगाव चिप एचका निमे चिचा होगा ने फिनटेक ए आई दोने किसा अमे जोकामा अरगाव चिप बु चिचा होगा बदा ला होगा असम राइफल्स ए पी पी दोने सी आर पी एफ में बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट खुनसा तिकोचे मेडिकल कॉलोनी दोने क्लब कॉलोनी मा आई मुगा अंजी अमेगा इमुगे रोटेगे ने खुनसा तिकोचे पुलिस थोकामा अंकगा बदा होगा ऑनलाइन लगादा अकुआ पेरुगामी ताओचिपो ईटानगर पुलिस में देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज को अरगा गने बुनी लाजो प्रोग्राम गे अखगा महो आई मुगा अंजी ताव पूजे एन डी पी एस एक्ट अचू लकदा अजिया अनो अचू ऐदोने पुलिस पब्लिक में जरगा वे थोपुचिपो अलाजिगा चिदा अहोगा आतिकामा खो नोगा अखावे अकुआ पे थू सेगा जिम्मी धावे ऐदोने आतिका बु गबाने पुलिस में खाजिन जवाया एको बे कैपिटल एस पी जुमार बासार में लाके बने आयुमगा अंजे लापागे आरुगा मेंदो आयुगा बने पुलिस में काजिन जोवे एको बे लाके बदा आहोगा ऑनलाइन लाकादा आजिगा चा तावमा काजिया काजे एजेंसी आलो प्रमे जावगा वे आयुंदगा एको बबु एस पी आजामे लाके बदा

0: tawangmane sakyamuni buddhache anjian do enkyo chipwa madowe gabane tawang disi namgyal angmo me buni meeting jinagane ali ekagaji ma khoya imutan do iga wa chawu gane department institution do ne ikisha imuke bane pra madote chipwa jorga mboji na lai bada ahoga ali ekega ho ekamu epenga taichi ichigabu kajigami atu tijina ne dishime lati wabada ahoga Arunachal Pradesh ma abunya na ya tawang west coming east coming kurunkume pake kesang papum pare done anjao ai done changlang district ma che atika brai ma arunya ma ya abuli che bara bodone na pra ayo sadane itanagar meteorological center ma chime la hoga china open badminton tournament ma ema megamu india ma chi kidambi srikant me Chinese type ma che chi yu jen he anyo ho khe hola ho do ne anyo ho khe hola ma point ma ne ane ga ne second round ma kya bata afga ma ho apaga la match ma india ma che drop kopila ne tanisa krasto me thailand ma che tunakon sai hen ne tunicha sai hen apaga la team he anyo ho khe yu do ne anyo ho khe khini point ma ne ane ga ne second round ma khiga bada la hoga eta chi idumismi aho alimao dabai
1: hiv embe chipo asawe auda kaga
2: hiv hembe he hiv gila ming chi iyu ga doga ga kandune ji doga ga hiv hembe gila injection thapo bgg tha doga ga mane hiv khi ali oda hiv hembe gila nani me a aga mane kha doga i
1: HIV embe he japa ji ge akon wega ge jepa hatu wage ai odone arondo me thoba mane HIV embe ki gumi
2: aline HIV hembe gi jinga ji tamako atusu arunda khaga hembe gi obo chama asaga ge igo abo engo ya bu ijiga atu ji toga hiwe HIV hembe yiji mi kaba asaga ala ji ji tamako agutene atusu ji Icha HIV hembe chipu ma ichibu asaoda uga ibuya hai National AIDS helpline chi number kage jiro khini iuma call eji Icha koba hai Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Department of Health Services Nahalagan ma chime lahega
3: Icha Akaswani Itanagar nali idmismi program ma echanta ashe anhonso khya maho etanye hendo ani mena chi chashe chi anji
4: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इडुमिस्मी बोली में समाचार आपको बता दूं इडुमिस्मी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जहां होती है दिल से दिल की बात इसी के साथ ही चलिए दोस्तों हमारी हिंदी फिल्में नगमों का सिलसिला को जारी रखते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म माय नेम इज खान से राहत फतेह अली खान और रिचा शर्मा की आवाजों में

0: Now just imagine. एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

0: See? You're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। आपको बता दूं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पर। और अब से कुछ ही देर बाद दोस्तों, आप सुन पाएंगे टांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे की कार्यक्रमों की सफर में, यानी हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी RJ नीलम थापा। तो अब आप मुझे, यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा HPT में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गई रहते तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: दिल की बात। आप सभी सुनने वालों का इस तीसरे प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इस सफर में आज मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ श्रोता मित्र, दूसरे प्रसारण सभा के खूबसूरत सफर का आप आनंद ले रहे थे आरजे गिचिक कनिक के साथ। स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे प्यारे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरजे गिचिक कनिक। आज सितंबर महीने की दूसरी तारीख है और दिन है बुधवार और समय हो रहा है शाम के 4:28। तो चलिए अब बिना समय बिताए इस तीसरे प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

0: श्रोता मित्रों, यूपीआई पेमेंट को शुरू हुए 10 साल बीत चुके हैं। भारत का ये पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। 11 देशों ने इसे अपनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेमेंट की शुरुआत क्यों हुई थी और किसने की थी? जी हां श्रोता मित्रों, इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 10 साल हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई से रोजाना कहा जाता है कि 66 करोड़ का पेमेंट होता है। हर महीने 29.88 लाख करोड़ रुपए के पेमेंट का जरिया बनने वाला यूपीआई आज 11 देशों में फैल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आइडिया सबसे पहले किसे आया? जब कार्ट, स्वाइप, एनईएफटी, आरटीजीएस और कुछ मिनटों में फंड ट्रांसफर करने के आईएमपीएस तरीके मौजूद थे, तो यूपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे एक स्कैन करने और पिन डालने के साथ कुछ सेकंड में पेमेंट कंप्लीट हो जाता है? जी हाँ श्रोता मित्र, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं दे दनादन फिल्म का ये गीत।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज़?

यूपीआई रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट का सबसे तेज तरीका है, जिसे साल 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने डेवलप किया। मोबाइल फोन में मौजूद यूपीआई ऐप की मदद से आप चंद सेकंड में स्कैन करके फोन नंबर पर या बैंक अकाउंट में सीधे पेमेंट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल की दूरी को खत्म कर पेमेंट को आसान बनाता है। साल 2016 में यूपीआई को भारत में एनपीसीआई ने तैयार किया। ये संस्था भारत में सभी डिजिटल पेमेंट एटीएम नेटवर्क की देखरेख करती है। इसे आरबीआई का समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से आपका पैसा यूपीआई पेमेंट के जरिए बिल्कुल सुरक्षित है। नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट के लिए आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता था, जिसे लिंक होने में कई घंटे लग जाते थे, जिसके लिए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत होती थी, जबकि कार्ड पेमेंट के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत होती थी, जिसे स्कैन करना पड़ता था। इसमें कार्ड क्लोनिंग जैसे फ्रॉड का खतरा बढ़ता चला गया। कई बार कार्ड भूल जाने से पेमेंट अटक जाता था। ऐसे में मोबाइल को पेमेंट एक वर्चुअल आईडी से जोड़कर यूपीआई पेमेंट को आसान बना दिया गया।

0: आपने सोचा है कि कैसे आप मोबाइल फोन पर पिन कोड डालकर सेंड बटन दबाते दबाते हैं और दूसरों के फोन पर पैसा रिसीव होने का मैसेज आ जाता है। इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि पूरी एडवांस तकनीक काम करती है। पूरा यूपीआई पेमेंट आईएमपीएस तकनीक पर टिका है। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब एक ऐसी तकनीक जो सातों दिन 24 घंटे तुरंत पैसे भेजने का काम करता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बंधु

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: बुद्धू,
3: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
4: नर्स दीदी, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
3: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
4: सच में दीदी?
3: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करे। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत धूम टू फिल्म से सुनिधि चौहान और अन्य साथी की आवाजों में। आपको बताते हैं कि 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने एनपीसीआई के तत्कालीन एमटी और सीईओ को सबसे पहला यूपीआई पेमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 5,000 रूपये ट्रांसफर किए थे। अगस्त 2016 में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया था। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आज हमने कार्यक्रम के तहत आपसे साझा की यूपीआई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर सम्पन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की विश्वसनीय सूचना के आधार पर असम राइफल्स वाला अरुणाचल प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के समन्वय से संयुक्त अभियान का आयोजन। कैपिटल पुलिस ईटानगर द्वारा देरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, एनडीपीएस अधिनियम और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, नए आपराधिक कानूनों तथा पुलिस जनसंबंधों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में साक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन एवं प्रदर्शनी के संबंध में एक समन्वय बैठक आयोजित। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की, कहा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्र लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की आवश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह में आयोजन करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके सपने साकार जरूर होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे

0: देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से कॉलेज विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, एनडीपीएस अधिनियम और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, नए आपराधिक कानूनों तथा पुलिस जनसंबंधों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैपिटल पुलिस अधीक्षक जुमार बासर ने विशेष जानकारी प्रदान की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की रोकथाम तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की व्यापक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए साइबर अपराध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधियों जैसे उभरती चुनौतियों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समुदाय के बीच समन्वय प्रयास के महत्व पर भी बात की। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन, पासीघाट और मैबो सब डिवीजन के आदि समुदाय द्वारा अपने प्रमुख फसल उत्सव सोलुंग महोत्सव का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। 3 दिवसीय उत्साह की शुरुआत विभिन्न गांवों में सोलुंग फ्लैग फहराने और देवी की ननाने के अनुष्ठान के साथ हुई। इस दौरान अच्छी धान की फसल और अन्य बागवानी फसलों की समृद्धि के साथ साथ समुदाय के लोगों और घरेलू पशुओं के कल्याण की कामना की जाती है। पासीघाट डिवीजन के गोरलुंग गांव में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए आरडब्ल्यूटी कार्यकारी अभियंता जोरसिंह मोयोंग ने कहा है कि सोलुंग केवल फसल आधारित उत्सव नहीं बल्कि ये उनके पूर्वजों की पारंपरिक मान्यताओं की विरासत भी है। उन्होंने कहा कि युवाओं में अपनी जीवंत परंपराओं को संरक्षित करने की भावना विकसित करने का भी अवसर होता है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन एवं प्रदर्शनी के संबंध में एक समन्वय बैठक आयोजित की। पवित्र अवशेष प्रदर्शनी आगामी 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक तवांग में आयोजित की जाएंगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा है कि पवित्र अवशेष प्रदर्शनी अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सार्वजनिक आयोजन है तथा इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रत्येक विभाग, संस्थान, संगठन और व्यक्ति से पूरे सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने विशेष रूप से स्वच्छता और उचित कचरा प्रबंधन पर जोर दिया तथा सभी से स्वच्छता को नियमित आदत बनाने और हर सार्वजनिक एवं संस्थागत मंच पर इस विषय को लगातार उठाने का आग्रह भी किया। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण, 5.5 टन दवाई भी शामिल है। नेपाल ने भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: बाढ़ के बाद नेपाल को सहायता प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के रूप में भारतीय फोरेंसिक दल को वहां तैनात किया गया है। नेपाल बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं।

0: लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया है। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं की एक जगह शामिल होंगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत स्थित अली अल सलेम अमेरिकी सैन्य अड्डे, जॉर्डन में अमेरिकी मरीन सैन्य शिविर और इराक में एक अमेरिकी अड्डे पर तैनात नागरिक निगरानी प्रणाली को निशाना बनाया है। IRGC ने एक बयान में कहा है कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के कमांडर के आवास और कमान चौकी पर सफलतापूर्वक हमले किए गए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बायकाई ने कहा है कि सिरिक में एक घर पर एक समारोह के दौरान हुए अमेरिकी हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं।
2: अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान पर इससे भी बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन के कैंप टिटिन में अमरीकी सेना की बैरकों पर हमलों की जिम्मेदारी ली। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर तैनात अमरीकी सैन्य बलों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बैडमिंटन में भारत में किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे ची यू जेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के लिए अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाइस से हराकर टूर्नामेंट से बाहर हुए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्स को कड़े मुकाबले में सीधे सेटों में हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की भी थाईलैंड के तनाकोर्ने सोयहेंग और तोनीचा सोयहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपू गपक। इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू नेपाल इन द ऑनगोइंग रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स। द फिफ्थ इंडियन एयरक्राफ्ट कैरिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ असिस्टेंस हैज अराइव्ड इन नेपाल। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर said the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. The death toll from the devastating floods in Nepal has crossed the 1,100 mark. According to Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, as many as 1,114 bodies swept away by last week's deadly floods had been recovered till date. The highest number of bodies had been recovered in southern Chitwan district, followed by Nawalparasi East. Authorities said 95 bodies have so far been identified and handed over to their relatives. Around 4,000 people remain out of contact, including government employees, security personnel, elected representatives, foreign nationals, Nepalese accompanying foreign tourists, local residents and workers employed at hydropower projects. Meanwhile, the whereabouts of many people reported missing from 11 flood affected

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और अभी आपने सुना नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नुक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: जी श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5:07 हो रहे हैं, और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

are you? श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब। श्रोता मित्र, आज गीतों के साथ हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनवाना चाहेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। श्रोता मित्रों, सभी धर्मों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान से ही समाज में समानता

0: आ सकते हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए कई रास्ते मिल सकते हैं। इसी से संबंधित एक कथा हम आपको सुनाना चाहेंगे। जी हाँ, कथा के अनुसार फलों के एक दुकानदार ने एक ग्राहक को फलों के दाम बहुत ज्यादा बताए। तभी वहां एक गरीब महिला आई, उसने केले और सेब फल के भाव पूछे। दुकानदार ने महिला को फलों के दाम बहुत कम बताए। इतने कम भाव सुनते ही पहले वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। वो कुछ बोलता इससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय ग्राहक शांत हो गया। महिला ने फल लिए, पैसे दिए और वहां से चली गई। इसके बाद पहला ग्राहक गुस्से में बोला कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतना ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? उस महिला से तो तुमने बहुत कम दाम लिया है। दुकानदार बोला, भाई मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। वो महिला बहुत गरीब है, स्वाभिमानी है, वो कभी भी किसी से मदद नहीं लेती है। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तब मैंने सोचा कि इसकी मदद करने के लिए इसे कम भाव में फल देना चाहिए। इसके बाद से मैं इससे फलों के नाम मात्र के पैसे लेता हूं, ताकि उसका भी स्वाभिमान बना रहे और मेरी मदद भी उसे मिल जाए। श्रोता मित्रों, ये बात सही नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। हमारी जितनी शक्ति है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। दान करने की इच्छा है तो उसका रास्ता भी मिल सकता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे रईस फिल्म का ये खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब और आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो इसी के साथ ही आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत तारारंपम फिल्म से शान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में।

मित्रों, तारा रामपम फिल्म के संगीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आप कहीं जाएगा मत, हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोत मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोत मित्रों, कुछ चुनिंदे गीत संगीत से आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की कोशिश में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

उसकी खुशबू अगर अपनी सांसों में हो, उसका सपना अगर अपनी आंखों में हो, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। जी हाँ श्रोता मित्र, ये गाना अपने दौर का एक बेहतरीन मेलोडी और सदाबहार प्रेम गीत माना जाता है, जिसे आज भी सुनना लोग पसंद करते हैं। इस गाने के संगीतकार जतिन डली थे और इसे अपनी सुरीली आवाज से कुमार सानू ने सजाया है। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री पर फिल्माया गया ये ट्रैक प्यार की शुरुआती भावनाओं और इजहार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। तो चलिए इसी के साथ ही अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, ये बेहद ही प्यारा गीत सागर फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
1: सच में दीदी?
0: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे शाम की महफिल कार्यक्रम का ये आखिरी गीत कुमार सानू की आवाज में, फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना से। श्रोता मित्र, उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए गए गीतों का आप सभी ने आनंद लिए होंगे और एक खूबसूरत समा बन गया होगा। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: दी, ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: RBI कहता है,
0: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
10: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
9: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
11: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
12: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:03 हो रहे हैं, और इसके साथ ही आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अखियों के झलकों से, फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत, जी हाँ, इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

अरुण एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं अखियों के झरोखों से फिल्म के कुछ चुनिंदे नगमे। आपको बता दें कि इस गीत को आप सुन रहे थे रविंद्र जैन की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्र, ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी, जो कि बेहद ही लोकप्रिय और क्लासिक हिंदी रोमांटिक फिल्म है। निर्देशक हीरेन नाग। आपको बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सचिन पिलगांवकर और रंजिता कौर। निर्माता राजश्री प्रोडक्शन और इस फिल्म के संगीतकार हैं रविंद्र जैन। श्रोता मित्र, ये फिल्म आपको बता दें कि अमेरिकन ऑथर एरिक सेगल के प्रसिद्ध 1970 के उपन्यास लव स्टोरी से प्रेरित थी। फिल्म की कहानी अरुण और लिली नाम के दो कॉलेज के छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो पहले एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, फिर प्यार करने लगते हैं और बाद में उनके परिवार भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि कहानी में एक दुखद मोड़ आता है जब लिली को गंभीर बीमारी यानी कि कैंसर हो जाती है। फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, विशेष तौर पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग अखियों के झरोखों से, जिसे गायक हेमलता ने आवाज दी है और रविन्द्र जैन के संगीत ने इस गीत को अमर बनाया। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का एक और गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे बैराग फिल्म से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही समय में यानी कि 6:30 पर आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप बने हुए हैं रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, दुनिया भर में मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन आज के हमारे महान कलाकार फनकार हैं। ...2018 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में फेस्टिवल के प्रोड्यूसर संजय राय के साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने जीवन के पन्नों को खोला था। लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर ने जाकिर हुसैन पर पुस्तक जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक लिखी थी। इसी दौरान उस्ताद जाकिर हुसैन ने कहा था, जब मैं पैदा हुआ तो मां ने मुझे पिता उस्ताद अल्ला रखा की गोद में रखा। दस्तूर के मुताबिक उन्हें मेरे कान में एक प्रार्थना सुनानी थी। पिता बीमार थे लेकिन फिर भी वो अपने होठों को मेरे कानों के बिल्कुल करीब ले आए और तबले के कुछ बोल सुनाए। मां नाराज हुई और कहा कि ये तो अब सुकून है। पिता ने जवाब दिया कि संगीत मेरी साधना है और शुरू से मैं सरस्वती और गणेश की पूजा करता हूँ, इसलिए यही सुरताल मेरी दुआ है। जी हाँ श्रोता मित्र, उनके बारे में जानेंगे विस्तार से। इससे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। आपको बता दें कि उनके साथ साथ आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदे गाने जिसमें जाकिर हुसैन ने अपना हुनर दिखाया है।
1: माँ क्या कहती थी?
2: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर भलाइयां लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
1: जानते हैं बाबूजी, श्याम सावरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
2: क्या

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

पंडित विश्व मोहन भट्ट ने बताया कि तबले को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ उस्ताद जाकिर हुसैन को है। उन्होंने इस वाद्य को इतना सरल बनाया कि घोड़े के ताप, शंकर भगवान का डमरू और मंदिर की घंटी उनके तबलों की थाप से सुनाई देती थी। वे असली एंटरटेनर थे। शास्त्रीय संगीत के शास्त्र को पब्लिक को आसानी से समझाना उनकी खूबी थी। पंडित बिरजू महाराज ने भी ऐसे ही कथक के साथ किया था। जी हां, उनका जन्म 9 मार्च 1951 को महाराष्ट्र में उस्ताद अल्ला रखा और बावी बेगम के घर हुआ था। जाकिर का बचपन पिता की तबले की थाप सुनते ही बीता और 3 साल की उम्र में जाकिर को भी तबला थमा दिया गया, जो उनसे फिर कभी नहीं छूटा। पिता और पहले गुरु उस्ताद अल्ला रखा के अलावा जाकिर ने उस्ताद लतीफ अहमद खान और उस्ताद विलायत हुसैन खान से भी तबले की तालीम ली। जाकिर ने पहला प्रोफेशनल शो 11 साल की उम्र में किया था, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए मिले थे। आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीत में तो उन्हें महारत हासिल थी ही। कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक यानी कि पश्चिम और पूर्व के संगीत को एक साथ लाने के कामयाब प्रोग्राम की वजह से उन्हें काफी कम उम्र में ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में ख्याति मिली। मिकी हार्ट, जॉन मैक्लोफ्लिन जैसे आर्टिस्ट के साथ फ्यूजन म्यूजिक बनाने के दौरान ही उन्होंने अपना बैंड शक्ति भी शुरू किया। फ्यूजन म्यूजिक बनाने के बाद भी उन्होंने कभी तबले को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके मुताबिक तबला बचपन से उनके साथ एक दोस्त और भाई की तरह रहा। जाकिर हुसैन उस दुर्लभ योग्यता के तबला वादक थे जिन्होंने सीनियर डगर ब्रदर्स उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेकर बिरजू महाराज और नीलाद्री कुमार हरिहरन जैसे 4 पीढ़ियों के कलाकारों के साथ तबले पर संगीत की। सिनेमा जगत में भी उस्ताद जाकिर हुसैन का योगदान अहम है। बावरजी सत्यम शिवम सुंदरम हीर रांझा और साज जैसी फिल्मों के संगीत में उस्ताद की बड़ी भूमिका थी। सिर्फ संगीत ही नहीं, लिटिल बुद्धा और साज जैसी फिल्मों में उस्ताद ने एक्टिंग भी की थी। तो चलिए अब हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं साज फिल्म से।

श्रोत्रा बनी हुई है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन की, जो कि एक मशहूर तबला वादक थे। आपको बता दें कि जाकिर हुसैन को 1988 में सबसे कम उम्र में पद्मश्री से नवाजा गया। हुसैन को पद्मश्री मिलने पर खुशी से गदगद गुरु और पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने उन्हें हार पहनाया था। एक शागिर्द के लिए इससे बेहतरीन और यादगार क्षण और क्या हो सकता है। इसी समय पहली बार पंडित रवि शंकर ने जाकिर को उस्ताद कहकर संबोधित किया था। इसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं थमा। उस्ताद को 2002 में पद्म भूषण, 2006 में कालिदास सम्मान, 2009 में उनके ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला, 2023 में पद्म विभूषण और 2024 को एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में एक साथ तीन ग्रैमी अवार्ड्स जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। साल 2010 में उस्ताद अलारखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक की तरफ

से उन्हें पंजाब घराने के तबला वादक के सबसे बड़े गुरु होने की उपाधि दी गई थी। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं हीर राजा फिल्म का ये गीत।

0: श्रोता मित्रों, जाकिर हुसैन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी एंटोनिया मिनिकोला से हुई थी, जो एक कथक नृत्यांगना और शिक्षिका थी। साथ ही जाकिर हुसैन के प्रबंधन भी थी। उनकी दो बेटियां हैं। अद्वितीय प्रतिभा और रियाज के माध्यम से तबले को खास पहचान दिलाने वाले जाकिर हुसैन की हस्ती कितनी मकबूल थी, इसका अंदाजा इसी से होता है कि उन्हें कई प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो चलो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं एक एल्बम गीत, लीजिए प्रस्तुत है।
1: नैनों की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। नैनों की बातों पे भरोसा नहीं आता,

लिखत पढ़त न रसीद न खाता। हाँ, कभी अफसाने सुने होते आंखों के तो ये न कहते। ये अखियां निचली नहीं रहती, लम्हों से लेकर सदियों की दास्तानें कहती हैं। कैसे एतवार न आए इन पर, इन्हीं से तो वक्त बिरह जाता है। सदियां झुटला कर लम्हे सच कर देती हैं। कैसा होगा वो लम्हा जब परसों बाद मिली और कोई बोला नहीं, न हम बोले न वो।

श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस एल्बम गीत को यानी कि बोले नैना का ये एल्बम गीत आप सुन रहे थे प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज में, जो कि कलाकार और गायक है। और इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने और संगीतकार है दीपक पंडित। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस गीत से उस्ताद जाकिर हुसैन भी जुड़े हुए थे। श्रोता मित्रों, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर 2024 की देर रात अमेरिका में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन जी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कला की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हम

हमारी यादों में जीवित रहेगी। तो इसी के साथ ही मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आगे आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार।

但那个在照顾后吧，你是那点点那么，你给把那个老伯那个阿金给他公婆打发了。

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:05 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चर प्रोग्राम, जिसके तहत आज आप सुन पाएंगे एनजीओ पांगसोकान के प्रेसिडेंट साइमन रोंगरांग के साथ एक खास भेंट वार्ता।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा में। सफरनामा में हम आपको लेकर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से लेकर उन ऐतिहासिक जगहों तक जहां हर मंजिल की अपनी एक कहानी है। लेकिन आज का हमारा सफर थोड़ा अलग है। आज हम किसी नई मंजिल की ओर नहीं जा रहे, बल्कि एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जा रहे हैं जहां बीते हुए समय की यादें आज भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री की। चांगलांग जिले में बसा जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो वर्ल्ड वॉर टू के दौर की कई अनकही कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आखिर इस जगह की खासियत क्या है और जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री में टूरिज्म के विकास की कितनी संभावनाएं हैं? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे जयरामपुर बेस्ड एनजीओ पांगसोकान के प्रेसिडेंट श्री साइमन रोंगरांग से। तो आइए आज का सफर करते हैं एक खास बातचीत के साथ। तो इस जगह के इतिहास को और बेहतर समझने के लिए हमने बातें की जयरामपुर बेस्ड एनजीओ पांगसोकान के प्रेसिडेंट श्री साइमन रोंगरांग से। आइए सुनते हैं उनके विचार। तो साइमन जी, जब हम जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सिमेट्री की बात करते हैं तो अपने विचार से आपको क्या लगता है कि आज के डेट में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है?
2: थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो वर्ल्ड वॉर टू सिमेट्री है जयरामपुर में, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू का जो एलाइड फोर्स और एक्सिस फोर्स के बीच में जो लड़ाई हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये एक सेमेट्री है जहाँ पे मॉडर्न 1000 ग्रेवियर्स है। तो वहां में नॉट ओनली द सोल्जर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो घटना हुआ है उसका भी है, और स्टील वेल जब बना रहा था तो उस समय में वहां पे जितने भी वो पोटर्स थे, उसके बाद लेबर्स वगैरह थे, इंजीनियर्स थे, तो वो लोग वहां में काम करते करते, क्योंकि बहुत गहना जंगल था वो, इट वॉज अ थिक फॉरेस्ट एंड यू नो द ट्रीज वेर वेरी बिग, तो इसलिए वहां पे बीमार मलेरिया टाइफॉइड ये उस समय में इसका ट्रीटमेंट भी नहीं था, नॉट लाइक टुडे। सो दोस डेज इट वॉज रियली अ फेटल डिजीज नो वी कैन से। तो उस समय में वहां पे जो वर्क फोर्स था वो काम कर रहा था, तो वहां में भी जितने भी लोग मरे हैं वहां पे, तो ये दे वेर ऑल्सो put into grave, no? Here in this World War II. तो वहां पे ये इम्पोर्टेंस ये है कि वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि इट वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इसको बनाया गया था
3: जी,
2: तो ये बहुत साल के लिए अनडिस्कवर्ड था, इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड
3: जी।
2: तो यहाँ में है बोल के मालूम नहीं था, लेकिन द विलेजर्स यहाँ का जो सामने उमने का जो गाँव है, गाँव वाला लोग है, वो लोग जाके देखा है कि देर आर सम ईटास ब्रिक्स, तो यहाँ पे कुछ ग्रेवियर जैसा है। तो ऐसा करके व्हेन दे स्टार्टेड यू नो फाइंडिंग द फैक्ट्स ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दिस ग्रेवियर्स, दे कम टू लर्न दैट देयर वर अ ग्रेवियर्स वेयर इन द ग्रेवियर्ड इट वाज रिटन इन द चाइनीज स्क्रिप्ट, चाइनीज का स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है
3: जी।
2: तो मेजर जनरल है या कुछ एक दो है वो जो चाइना का भी है, चाइनीज वो आर्मी ऑफिसर्स लोग भी है, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें अभी जैसा कि इसमें लेबरर्स भी है, इसमें ऑफिसर्स भी है और कुछ सोल्जर्स भी है, तो इसमें नाम तो नहीं लिखा है हर ग्रेवियर्ड में, सो वी कैनॉट से नो, वी कैनॉट से दैट दिस वेर अ ग्रेवियर ऑफ दोस पीपल, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं
3: जी।
2: Yes.
3: तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ के जो लोकल्स लोग ने देखा कुछ ब्रिक्स थे, तो उन्हें कुछ डाउट हुआ, तो थोड़ा और रिसर्च टाइप का या खोजा, ऐसा भी माना जाता है कि 19

0: 97 में वहां के आसम राइफल्स को कुछ काम दिया गया था कि जंगल साफ करना है, तो ये क्या सच है ये?
1: यस यस
0: जी,
1: यस
0: अभी आपने ये भी कहा था कि यहाँ जो मारे गए थे जिनका कब्र है वह चाइनीज का हुआ, ब्रिटिश का हुआ, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की मान्यता ये भी है कि यहाँ के आदि हुआ, मिसमी हुआ, कुछ जयंतिया, ये लोग भी शामिल थे, लेकिन कोई हिस्ट्रिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो इस बारे में आपको बोलना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: यस यस इसमें हमारे जैसा आबोर्स हैं,
0: जी
1: तो आबोर का भी एक वो था उसमें, ये वर्ल्ड वॉर 2 में
0: जी
1: मैंने जो वो लोग काम करने के लिए जो लाया गया था, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि मिसमीस लोग भी थे बोल के ऐसा बोलता है. तो
0: जी
1: एंड सम रिसर्च स्कॉलर्स दे आल्सो हैव शेयर्ड दैट कहीं निग्रो लोग का भी यूज किया था बोल के ना, व्हेन इट
0: ओके
1: वाज अंडर द ब्रिटिश ब्रिटिश का जो एलाइड फोर्सेस का जो अंदर में आया था.
0: जी
1: तो देयर आर पीपल फ्रॉम
0: जी
1: डिफरेंट कम्युनिटीज, दे वर इन्वॉल्व इन द लेबर लेबर कॉर्प्स ना. तो
0: जी
1: वो लोग वैसा करके काम जो किया था, वो लोग का जो डेड बॉडीज वगैरह था तो
0: जी
1: इसमें ही दफना गया था. माइट
0: ओके
1: बी देयर वाज नो अल्टरनेटिव बिकॉज इट वाज ब्रॉट बाय द एलाइड फोर्सेस लेड
0: जी
1: बाय अमेरिकन,
0: जी
1: और ब्रिटिशर्स ने लाया है. तो जबकि ये एक वो लोग ग्रेवियर्ड का रूप में जब वो लोग बनाया है, तो मेरा ख्याल से उसी में सबको मैंने वो किया है, पुटिन किया है, वो भी हो सकता है.
0: तो आज के डेट में इस ग्रेव्स को या तो कहें मेमोरियल्स को बहुत लोग देखने आते हैं। जयरामपुर वर्ल्ड वॉर 2 सिमेट्री आज टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, रिसर्चर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बोलना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: या दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल यू नो प्लेस, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन,
0: जी
1: बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड यू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टिलवेल रोड,
0: जी
1: इट स्टार्टेड विद फ्रॉम द लेडो. तो
0: जी
1: दिस इज वेरी हिस्टोरिकल बिकॉज क्योंकि ये कनेक्ट करता है पंगसो पास, फ्रॉम लीडो टू पंगसो पास, पंगसो पास टू कुनमिंग इन चाइना,
0: जी
1: पंगसो पास इन म्यांमार.
0: जी
1: तो इट कनेक्ट्स टू चाइना. तो ये एक हिस्टोरिकल इसलिए बनता है क्योंकि इट एग्जिस्ट फोर्स जो जापान जो लीड कर रहा था, तो जापान दे वर ट्राइंग टू यू नो अटैक दिस ऑयल फील्ड डिगबोई का जो था.
0: जी
1: तो बिकॉज वो ब्रिटिश लोग का बहुत ही इनकम जनरेटिंग सोर्स वही था उस समय में,
0: जी जी
1: इकोनॉमी जो ऑयल का उसी से ही वो हुआ करता था. तो जापान का टारगेट बहुत था ऐसा, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं वहां में अमेरिकन कैम्प बोल के, वो रिमा पुटोक बोल के एक सर्कल है.
0: जी
1: तो वहां से वो लोग अमेरिकन कैम्प बोल के वहां से वो लोग वहां से जो जब एग्जिस्ट फोर्स लोग मिसाइल से अटैक करेगा या टॉप से अटैक करेगा, तो दे वे द वन यू नो द एलाइड फोर्सेस दे यूज टू डिफ्यूज.
0: जी
1: तो जैसे कि आज का अगर हम लोग आज हम अगर बोले तो व्हाट दे कॉल इट ना, जो डिफ्यूज करने वाला होता है.
0: जी
1: तो इसलिए ये क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि वी हैव लैक ऑफ नो रिटर्न इन म्यांमार, एंड इट हैज अ वेरी यू नो बहुत ही एक डीप एक स्टोरी है. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में वहां पे जेट फाइटर्स लोग को ग्रेविटी वो फोर्स से वो लोग को नीचे खींचता था और नाला में वो लेक में गिरा देता था.
0: जी
1: तो और यहाँ में अभी जैसा कि पंगसो पास है, इट इज एन इंटरनेशनल मार्केट. तो दीज आर ऑल रिलेटेड विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर
0: जी
1: एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेट, नॉट एसेट और वी कैन से एसेट ऑल्सो दैट वी हैव नाउ वी हैव टू टेक केयर नो, दैट इज अ वर्ल्ड वॉर 2 सेमेट्री. एट द सेम टाइम वी हैव दिस म्यूजियम, तो
0: जी
1: वर्ल्ड वॉर 2 का जितने भी वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह है सो वी हैव इन आवर म्यूजियम. सो व्हेन द विजिटर्स कम्स, टूरिस्ट कम्स, दे कैन जस्ट सी ना, देख सकते हैं और वहां पे लिखा हुआ है कहाँ का है क्या है. तो
0: जी
1: अभी वहां भी म्यूजियम है, और वी हैव एमपी थिएटर आल्सो. तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री हम लोग वहां पे दिखाते हैं, तो सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं बट टाइम टू टाइम हम लोग उसको हम लोग शो अप टेकअप करते हैं. तो
0: जी
1: वहां पे हम लोग बनाया है. सो एक जैसा कि वहां पर अगर आने से एक नॉलेज गेन करता है
0: जी
1: टूरिस्ट लोग, अगर आएगा बाहर से
0: जी
1: तो वो लोग को जानकारी होता है या दे लर्न दैट
0: जी
1: हाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट आर द यू नो फैक्टर्स
0: जी
1: द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर. तो उस समय का जो वो था, बट टुडे वी सेलिब्रेट इट एज एन यू नो फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस. वो वार होना है बोल के नहीं, बट वार वॉज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस ना. तो ब्लड शेड से वार से कुछ नहीं बन पाता है, बट पीसफुल इंटरनेशनल पीस के लिए या

0: म्यांमार के साथ हमारा पीस रहना है, चाइना के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना है, अच्छा बायलेटरल रिलेशनशिप होना है.
1: जी
0: सो द मैसेज गोज लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई वी
1: जी
0: सेलिब्रेट पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल
1: जी
0: एवरी ईयर.
1: सर, आपका जो मैसेज है, आपने जो सोचा वो बहुत बढ़िया मैसेज है. जब म्यूजियम की बात करते हैं तो मुझे ये भी बताया गया था कि यहाँ पर, क्योंकि जब चांगलांग की बात करते हैं, जयरामपुर की बात करते हैं, तो तांगसा कम्युनिटी की बात जरूर होती है. तो इस म्यूजियम में तांगसा कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स या कुछ कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें भी डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं.
0: यस यस वी हैव वन सोविनियर शॉप आउट देयर. तो वहां पे हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं. ऑलरेडी
1: जी
0: वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड.
1: जी
0: तो वहां में हम लोग तंगसास के जो हमारे ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, या जो भी हमारे लोग अटायर जो यूज करते हैं, लगाते हैं फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल ना, तो
1: जी
0: वो वगैरह वहां में हम लोग अवेलेबल करते हैं. और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तंगसास का भी बहुत रोल था. बट इट इज वेरी मच लाइक वी आर नॉट इन द बड़ा पोजिशन लेके, ऐसा नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल में तो क्योंकि हम लोग का ही जगह था ये, तो ये बस्ती ही हम लोग का, आदमी लोग का बस्ती का था. अभी उस वो बस्ती वाला लोग को थोड़ा दूसरा जगह में शिफ्ट करवा दिया था उस समय में अलाइड फोर्सेस ने. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: अगर जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सिमेट्री में कोई टूरिस्ट, कोई कोई ट्रेवलर या कोई भी जो रिसर्चर जाए, तो उन्हें क्या देखना चाहिए और आप उन्हें क्या क्या देखने की, क्या क्या करने की सलाह देंगे?
0: अगर जयरामपुर में आएंगे तो द फर्स्ट
1: जी
0: वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री है. उसके बाद आप लिदू से जब स्टार्ट करते हैं तो यू विल बी प्लाइंग ऑन द स्टीलवेल रोड.
1: जी
0: तो आप जाते जाते आएंगे जयरामपुर वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री में, म्यूजियम में आप जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आप एमपी थिएटर में,
1: जी
0: उसके बाद आगे और जाते रहेंगे तो वहां पे आगे जाके आपको देखने मिलेगा वो लाल पुल बोल के है. तो
1: जी
0: वहां में हैमिल्टन ब्रिज है. तो हैमिल्टन ब्रिज अभी तो एक हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से बनाया गया, लेकिन लेफ्ट साइड में एक हैमिल्टन ब्रिज है. तो वो ब्रिटिश समय में उस समय का बनाया वाला है. तो और आप और आगे जाते रहेंगे तो वहां पे हम लोग को हेलगेट बोल के एक तो वो है, हेलगेट में आप जा सकेंगे. उसके बाद में वहां में भी एक तो हैमिल्टन ब्रिज एक तो है, तो उस समय का बनाया वाला
1: जी
0: सेकेंड वर्ल्ड वॉर के.
1: जी
0: उसके बाद आगे जाके आप पंगसाओ इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे मार्केट में जा सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ पे होता है
1: जी
0: दोनों देश का, वहां में जैसे कि अभी 10, 20 और 30 ये महीना में 3 दिन खुला होता है वो, तो वहां पे जाके मार्केटिंग कर सकते हैं लोकल प्रोडक्ट. उसके बाद लेक ऑफ नो रिटर्न देख सकते हैं वहां पे. तो
1: जी
0: दिस आर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दिस आर द डेस्टिनेशन वेयर टूरिस्ट कैन विजिट एंड दे कैन एक्सप्लोर.
1: तो सर, टूरिस्ट के लिए या ट्रेवलर के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स आप कुछ बताएंगे?
0: यस फॉर द टूरिस्ट जैसा ILP, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट देर आर कैब्स अवेलेबल फ्रॉम डिब्रूगढ़ एंड फ्रॉम तिनसुकिया द कैब्स आर अवेलेबल. और जब वो आते हैं तो ILP, अगर इफ इज नॉन अरुणाचली देन दे विल हैव टू प्रोड्यूस ILP. अगर बाहर देश का होगा तो दे विल हैव टू कम विद अ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ना,
1: जी
0: रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट. उसके बाद यहाँ पे जैसा कि म्यूजियम में अगर आते हैं तो या देयर आर लाइक यू नो क्लीनलीनेस को मेंटेन करना पड़ेगा. तो देयर इज रिटर्न इन द बोर्ड एंड एंट्रेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू सेमेट्री
1: जी
0: द
1: सर
0: डूज एंड डॉन्स वगैरह है. यू कैन फ्रीली हैंग अराउंड
1: जी
0: वहां
1: सर
0: पे, घूमेंगे देख सकते हैं. लेकिन लिटरिंग इज अ कंसर्न, तो साफ सफाई मेंटेन करते हुए लेकिन कम विजिट. लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना अगर चाहता है
1: जी
0: पंगसाओ में, तब तो दे'ल हैव टू बुक द डेट्स 10 एवरी मंथ, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, ये 3 दिन में आना. बट फ्रॉम नामपोंग दे'ल हैव टू टेक स्पेशल परमिट.
1: जी
0: एक स्पेशल परमिट होता है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाता है, तो इसलिए दे'ल हैव टू ऑब्टेन द परमिट.
1: जी तो सर, फिर टूरिज्म की ही बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इससे वहां के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जब जयरामपुर की बात करते हैं, नामपोंग एरिया की बात करते हैं, उस एरिया के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा टूरिज्म से?
0: जैसा कि अभी वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड होम स्टेज.
1: जी
0: तो होम स्टेज में लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव सीन ड्यूरिंग द पंगसाओ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल,
1: जी
0: क्योंकि होल होम स्टेज वर बुक्ड. तो और उसमें जो आदमी लोग बैठेगा तो दे चर्च यू नो रेंट फूडिंग्स वगैरह के लिए रखता है, और अपना लोकल प्रोड्यूसर्स जो है वो बिक्री भी करता है, और खाने पीने का होता है. तो वो लोग जब आते हैं तो वेन दे बाय यू नो आर लोकल प्रोडक्ट, देन लोकल हैंडलूम्स वगैरह है जहाँ पे जो कपड़ा बनाता है हम लोग का. तो लोकल्स का जो सेलिंग होता है
1: जी
0: दैट इज द बेनिफिट फॉर द विलेजर्स
1: जी
0: लोकल्स के लिए वो एक अच्छा इनकम होता है. तो होम्स

0: का द्वारा एक थोड़ा अर्निंग तो होता है, और लोकल मार्केट जब जाता है तो आजकल हम देखा है एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम नामपोंग एंड रिमापुटोग
1: जी
0: फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूसर्स इन द
1: जी
0: मार्केट, तो
1: जी
0: दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। एंड अगर चलता है मार्केट में, अगर होता है तो लोकल इकोनॉमी जो है वो जो ग्रोथ हम लोग दिखाई देता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज एंगेज्ड। एंगेज होने का कारण ये है कि वो लोगों को कुछ आमदनी तो होता है, तो दैट वी कैन सी। सो लोकल इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट तो हम लोग दिखाई देता है
1: जी
0: इफ द टूरिस्ट कम्स एंड विजिट्स ना।
1: रुनरंग जी, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि रिसेंटली जो 500 पास जो और इंडिया और म्यांमार बॉर्डर में है वहां पे मार्केट खुला गया है, वहां से भी आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो ये खुलने से मुझे जहां तक दिख रहा है, जहां तक मैंने पेपर्स में पढ़ा है, लोगों के जो ओपिनियन से फीडबैक्स आए, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। पर्टिकुलरली जब इंडियंस की बात करते हैं बहुत एक्साइटेड दिखते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वहां के साइड को आप किस तरह से आप बताएंगे, वहां के साइड को, म्यांमार के साइड को?
0: म्यांमार बॉर्डर के उस तरफ में,
1: जी
0: तो वहां में जो है म्यांमार तरफ में जो बॉर्डर का एरिया में जो विलेजर्स है दे आर ऑल्सो तांगसास एक्चुअली,
1: ओके
0: तो वो भी हम लोग का ही अपना रिलेटिव्स लोग ही रहते हैं उस तरफ। तो फॉर देम गोइंग टू रेंगून, गोइंग टू नियर बाय मार्केट, इट इज वेरी फार। सो पंगसाओ इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर देम ऑल्सो टू सेल देयर प्रोड्यूसर्स, तो वो लोग के लिए भी इट इज अ सेंटर पॉइंट ना
1: जी
0: टू सेल देयर प्रोड्यूसर्स। सो विलेजर्स फ्रॉम देयर दे कम, और वो लोग के लिए भी जैसा हमारी इंडिया में बेनिफिट हो रहे हैं, तो वो लोग का लोकल जो विलेजर्स है वो आमने सामने का जो वो है,
1: जी
0: फॉर देम ऑल्सो इट इज द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट दे आर गेटिंग।
1: जी
0: तो
1: सर
0: जो इकोनॉमी वो लोग का भी जो डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो
1: जी
0: बिकॉज ऑफ द मार्केट दैट इज हैपनिंग
1: जी
0: there in the and from their side also it is always welcoming no, to have this market because it is improving their when they have a benefit from this market by selling the producers, तो obviously it goes to their children, वो लोग पढ़ाई के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, घर में खाने पीने के लिए, तो इट रियली कंट्रीब्यूट ना, इट रियली कंट्रीब्यूट। तो द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो।
1: सर, आपने हमसे बातें की और पर्टिकुलरली जयरामपुर वर्ल्ड वार टू सिमेट्री के बारे में और टूरिज्म जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, थैंक यू।
2: तो ये थी हमारी खास बातचीत जयरामपुर वर्ल्ड वार टू सिमेट्री को लेकर, और इसके लिए हमसे बातें साझा कर रहे थे जयरामपुर बेस्ड एनजीओ पांगसो कान के प्रेसिडेंट श्री साइमन रोनरांग। जयरामपुर वर्ल्ड वार टू सेमेट्री हमें उस दौर की याद दिलाता है जब हजारों किलोमीटर दूर से आए सैनिकों, इंजीनियरों और मजदूरों ने मुश्किल परिस्थितियों में काम किया, और शायद यही सफरनामा का मकसद भी है, आपको सिर्फ जगहों तक पहुंचाना नहीं बल्कि उन जगहों की कहानियों से जोड़ना।

अभी आप सुन रहे थे टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चर प्रोग्राम, जिसके तहत आपने सुना एनजीओ पांगसो कान के प्रेसिडेंट श्री साइमन रोंगरांग की जुबानी जयरामपुर में स्थित वर्ल्ड वार टू सेमेट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है पर्यटकों के लिए ये जानकारियां फायदेमंद रहेगी। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं चंद हिंदी फिल्मी गाने।

مجنون شیری اور فرحہ ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار.

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कर्ज फिल्म का ये बेहतरीन गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आपको बता दें कि आगे भी आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आप जुड़े रहें रुन एफएम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: एचआईवी का मतलब क्या है?
1: कहाँ से सीखा है ये सब? ये सब छोटे बच्चे नहीं बोलते।
2: नहीं पूछना गलत है, पूछना चाहिए। यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। एचआईवी है एक वायरस जिसके कारण एड्स जैसे और कई अन्य रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को ये हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए सही समय में एचआईवी टेस्ट करना होता है जरूरी। आज से तुम भी इन सब बातों को खुल के कहो। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? याद रखिए, आप भी अपने बच्चों की परवरिश करें अच्छे से, उनके साथ एचआईवी के बारे में बातें करें खुल के। अब हर सरकारी अस्पताल में एचआईवी टेस्ट गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अधिक जानकारी के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
3: अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहर लगून डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
8: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं काबिल फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे धूम 3 फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज में। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत सिंह इज किंग फिल्म से, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने।

0: श्रोता मित्र, इस बेहतरीन गीत का आप सुन रहे थे केकी की आवाज में, लाइफ इन ए मेट्रो फिल्म से। और इसके साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 8 बज रहे हैं और इसी के साथ ही अब समय हो चला है अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का।
1: अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं गैर अतः। श्रोता, जैसे कि आप जानते हैं

है कि हम अपना गीत कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों के गीत आपको सुनवाते हैं। अब कई श्रोता ये समझते हैं कि मैं आपको गीतों का मतलब पहले समझाती हूँ फिर गीत सुनाती हूँ, मगर ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ गीतों का मतलब मैं जरूर बताने की कोशिश करती हूँ, मगर मेरी जान, ये अरुणाचल प्रदेश है, विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ कई बोलियाँ कई भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में मुझ खनिज में इतनी खासियत नहीं कि हर गीत समझ पाऊँ, मगर हाँ, ज्यादातर मंशा यही रहती है कि आपको उन पुराने गीतों से, पुरानी टेप रिकॉर्डिंग से रूबरू कराओ। और यही आकाशवाणी की खासियत भी है कि हम अपने श्रोताओं को उस जमाने के गीतों को उसी समय के रिकॉर्डिंग्स के साथ सुनाते हैं। हालांकि नए जमाने के गाने भी हम जरूर सुनाते हैं, फिर भी अपना गीत कार्यक्रम में अधिकतर गीत पुराने रिकॉर्डिंग्स के होते हैं। खैर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, संगीत कोई भाषा या सीमा नहीं जानते। चलिए, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक शुरू करते हैं इस ईदू गीत से, जिसे गाया है आई चू मेंजो ने।

श्रोता सुन रहे थे नीलम पोप की आवाज में निशे गीत। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज, जहां पर चल रहा है कार्यक्रम अपना गीत। दोस्तों, यूं तो जमाना धीरे धीरे मशीनों का गुलाम होते जा रहे हैं। हर वो बात, हर वो काम जो अपनापन का एहसास दिलाते थे, वो अब मशीनों ने ले ली है। अब तो बस बातें होती हैं, मगर एहसास बहुत कम। हर

वो काम हर बात मोबाइल से, इंटरनेट के जरिए या कंप्यूटर से हो जाता है, तो मिलने की जरूरत ही नहीं है। मगर एहसास का क्या, जो एक दूसरे से मिलकर आमने सामने बात करने का जो एहसास है वो तो पीछे रह गए ना। अपनों से घंटों फोन पे बातें क्यों ना कर ले, लेकिन एक दूसरे से मिलकर बात करने का जो मजा है, जो एहसास है, वो कुछ और ही है। बस यही कहना चाहूंगी कि भले ही हम इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जमाने पे हो, लेकिन थोड़ा वक्त तो अपनों से मिलने के लिए निकाल ही लेना चाहिए। और श्रोता, इस मामले में गीतों का अपना एक अलग अंदाज है और एक फायदा भी है। वो ये कि वे हमारी भावनाओं को सुरों में फिरो लेते हैं और उन अपनों तक पहुंच भी जाते हैं। जी हाँ, इन्हीं बातों से मिलता जुलता एक गीत सुनाने जा रही हूँ इस तारसन मुकर और यो योमसो की आवाज में। ये गीत है आदि भाषा में।

0: मुदंग एलयू द्वारा गाए इसी अपतनी गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जमीन आसमान और समंदर का सीना चीर कर जो आगे बढ़ जाए, वो भारत का वीर जवान है जो हर मुश्किल से लड़ जाए। तिरंगे की शान के लिए जो जान हथेली पर रखता है, ए वतन तेरा हर एक सिपाही खुदा की तरह बस तुझसे प्यार करता है।

ना पूछा करो हमसे कि हमारी पहचान क्या है, ना पूछा करो हमसे कि हमारी पहचान क्या है, हम तो बस इस मिट्टी के सिपाही है और यही हमारी शान है। जो सोते हैं चैन से अपने घरों में रजाई ओर कर, जो सोते हैं चैन से हमारे घरों में रजाई ओर कर, उन हुकुम के फकीरों को बता दो सरहद पर जलती वो हर एक लोग हमारे वीर जवानों की बलिदान की पहचान है। तो श्रोताओं, इसी के साथ चलिए सुनते हैं आज का आखिरी देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय। तब तक के लिए आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे हैं और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, बीते जमाने के अनमोल गीतों का खजाना, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गुजरे दौर के कुछ चुनिंदे नगमे। ये हवा, ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगीन इशारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर ना दोबारा। जी हाँ श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाज दी है आशा भोसले और मन्ना डे।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। जी हाँ, आप सुन रहे थे घर संसार फिल्म का गीत। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोतामित्र आप आनंद ले रहे थे असली नकली फिल्म के इस खूबसूरत गीत का, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। जी हाँ श्रोतामित्र, आप आनंद ले रहे हैं गुजरे जमाने के कुछ बेहतरीन गीतों का। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो।
2: अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में परिणीता फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से सजाया है अरुण कुमार मुखर्जी ने। श्रोता मित्रों, चलिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पारस मणि फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे पारस मनी फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है इसे फिल्म का अगला गीत और कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

0: तेरे दिल की बात। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार।
1: गुजरा करते थे ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती, जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा सिर्फ दो देशों का दौरा नहीं थी। ये ताशकंद में यूरेनियम की डील से भारत के जोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का, ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में, भाई लिख रहा है। क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत कर, राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक, एससीओ के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
2: एक इन्फ्लुएंस रूस का है, वो पुराना है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे, 1900 हवा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी की बात वहां पर चल रही है। उधर अमेरिका है तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका का साथ लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है, और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है, जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सेंक्शन और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जाना पड़ा, 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है,
1: लक्ष्य रखा है, वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यवहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
3: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं।

0: डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है और वो फायदा हो सके। तो एक तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं उपकरण होते हैं वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम, और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की, कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात का संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है
1: जी।
0: उसमें जो ये तमाम जो नवाचारिक क्षेत्र है इनका भी उल्लेख है, इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर, ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है
1: जी। त्रिगुनायक जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक के क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है लगभग 100 गीगावाट बाय 2047। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया, तो अल्टरनेटिव जो हमारे पास हैं, जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार

0: बन रहा है?
1: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने ईवीएम्स के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना यूपीआई हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना यूपीआई स्वीकार्य है। चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो, जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्प्लिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया। ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो डीपीआई का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के डीपीआई की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है, इसका ये बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं, इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
0: जी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है।
0: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
3: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपनी एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों

0: के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से, उनके कुछ रेड्स टाइप के जो है बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने, इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी पार्ट वो नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ ईरान,
1: जी
0: कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी। तो ये जो सारी सीमाओं का फिर तो मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था, और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर पजेशकियान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
2: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की ये संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए, ये देश जो है वो जियो पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण, इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देख, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के एससीओ समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्ट, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए, और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे, न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है में कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए, न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है, आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक

0: हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना जीडीपी इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत यूएनएससी में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायर जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहे, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायर जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया

के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। दो दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिमों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों से बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध की आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: औद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेबर भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। पूर्व एयर मार्श की गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भाकचंदका और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और वर्षा का अनुमान है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2027 में होने वाली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। श्रीलंका से मेजबानी वापस लेने का कारण वहां क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक विवादों

0: intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. In Uttar Pradesh, former commander of Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, has been appointed as the first CEO of the Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of the trust held at Mani Ram Das Chavni in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. Recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, Air Marshal Mishra retired on the 30th of April this year. Prime Minister of Belgium, Bart Wever, will arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Fonken. This will be Prime Minister De Wever's first visit to India since taking office in February last year. He will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi tomorrow to discuss the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, defence and security, and renewable energy. The Reserve Bank of India, RBI, today said its special US dollar Indian rupee USD INR forex swap facility has received forex inflows of over 136 billion US dollars till August 31, 2026. Of the total inflows, foreign currency non-resident bank deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to 127.2 billion US dollars. In badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of the China Masters Super 750 tournament with straight game victories.
1: मुख्य समाचार: भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी. मृतकों की संख्या 1,200 से अधिक हुई. 4,000 से अधिक लोग अभी भी लापता. भारत ने रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय योजना द्वारा 136 अरब डॉलर जुटाए. मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB प्लस से बढ़ाकर A माइनस किया. बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे. और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद विस्तार से. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में राहत अभियान तेज कर दिया है और आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी है. एक रिपोर्ट. नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत और बचाव सहायता लेकर पांचवा भारतीय विमान आज दोपहर नेपाल पहुंचा. भारतीय वायुसेना ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी हैं. भारत ने विशेष तलाश और बचाव सहायता भी प्रदान की. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया. श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों तथा बहुपक्षीय साझेदारों से सद्भावना संदेश और भौतिक सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अब तक 7 अरब नेपाली रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हो चुकी है. विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी. नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,204 हो गई है, जबकि 4,216 लोग अभी भी लापता हैं. रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है. रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की. रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया. अब FCNBB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

0: ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर ए माइनस कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में जेसीआरए ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लगातार लागू की है। जेसीआरए ने बैंकिंग सेक्टर में हुए सुधार की ओर भी इशारा किया और बताया कि इस साल मार्च के आखिर में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन का अनुपात घटकर 1.8% हो गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से
0: मनियम जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आधिकारिक दौरे पर आज पोलैंड पहुंचे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की से बातचीत करेंगे। पोलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद विदेश मंत्री यूक्रेन जाएंगे, जहां वे यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से बातचीत करेंगे। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक गतिविधियों से चिन्हित है। भारत कनाडा विदेश कार्यालय की वार्षिक परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुदेन टंडन और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री अरुण थंगराज ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत जुड़ाव का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच नई रणनीति अपनाने की चेतावनी दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजई ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध के मैदान, कूटनीति और आर्थिक नाकाबंदी से निपटने के लिए तैयार की गई ईरान की नई रणनीति विरोधियों की नींव हिला देगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के अनुसार ये हमले अमरीकी सैन्य अभियानों के जवाब में किए गए हैं और इनमें 18 लोग मारे गए हैं। इन नए हमलों से 6 महीने से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाए हुए है, जबकि अमरीका ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाकर नाकाबंदी कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरी के एक तेल टैंकर पर ईरानी हमले में फिलीपींस के 2 नाविक मारे गए। कंपनी ने अपने जहाज सिद्र पर हुई मौतों की पुष्टि की है। सऊदी अरब ने टैंकर को निशाना बनाने की ईरान की कार्रवाई की निंदा की है। कुवैत ने भी सऊदी टैंकर पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन और समुद्री नौवहन, अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सीधा खतरा बताया। कुवैत ने तनाव बढ़ाने वाली सभी कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियन